तेरा राज नहीं चले। हे मेरे रब, क्योंकि तेरे वर्गा होर कोई रब है नहीं। मैं तो एक बार अर्ज की थी, कभी गहराई नाल वाचियो। असि कई बार शब्द पढ़ने हैं ते बड़े शौक नाल पढ़ने हैं। खालसा अकाल पुरख की फौज,

पानी विच कास्त अगण तरी जै बकरी सिंह इकता थाए रखे मन हर जप प्रम भो दूर की जै हर की वड्याई देखो संत हो हर निमाणिया मान देवाए।

हर की वडियाई देखो संत हो हर निमाणिया मान देवाए जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे

अब मोही तन पायो हर नामा भई अचिंत तृष्ण सब बूझी है यही लिखियो लेख मथामा राओ खोजत भयो बैरागी फिर आयो देह गिरामा गुर कृपाल सौदा ही जोरियो हाथ चरियो लाल अगामा आन व्यापार बणज जो करिया तेते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नाम सारग महला पंजवा मेरा मान मैश लगे पै बोला गुरबहा पकर प्रभ सेवा लाई सद दयाल हर ढोला राउ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रतपाल गए मोहि कलतर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं ओला जे तख्त बैसल हैं तां दास तुम्हारी काश डब डाब है केतक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बदाते मेरे ठाकुर अगा तोला सारग महला पंजवा रसना राम कहत गुण गा सोहन एक निमखो पाई सुमावै देख चरत मन मोहन राहु जिस सुनया मन होए अतरहस आत हृदय मान दुख सोहन सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभु तोहं गल विख में गए मन निर्मल होई है गुर काढ़ी माया द्रोहं कहो नानक मैं सुप्रभ पाया करण कारण समर्थोहं सारग महला पंजवा नैन हो देखियो चलत तमाशा सब हूँ दूर सब हूँ ते नेरै अगमक अगम कटवासा राउ अपूल ना भूलै लिख्यो ना चलावै मता न करे पचासा फिन मैं साज सवार बिना है भगत वशल गुण तासा अंधकूप महें दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूर्ण होई आसा सारग महला पंजवा चरनहा गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किस धाइय तेतो ही दुख हावा राउ नेत्र पुनीत भय दर्श पेखे हस्त पुनीत टहलावा हृदय पुनीत हृदय हर बसयो मस्त पुनीत संत दुरावा सर्वनिधान नाम हार हर कै जिस कर्म लिख्या तिन पावा जन नानक कौ गुर पूरा पेटयो सहज सुख सहजे आनंद विहावा सारग महला पंजवा ध्यायो अंत वार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई न पहुँचै तहां तहां तू रखा रहो अंधकूप ग्रह मह बै तैन सिमरयो जिस मस्तक लेख लिखा खूले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही रिदिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाई रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सारग महला पंजवा गुरमल ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख पंजन लगन ताती वाया रहाउ जेते सास सास मलेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरै कही करी न बिसरै सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल काउ बल बल गुरदरसाया कहो नानक काहू परवाह जौ साख सुख सागर मैं पाया सारग महला पंजवा मेरे मानु शब्द लगो गुर मीठा खुलियो कर्म भयो परगासा कटकट हर हर डीठा रहाउ पार ब्रह्म अजोनी संभव सर्वथान कट डी बीठा भयो प्राप्त अमृत नामा बल बल चरण प्रभ चरणीठा सतसंगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पहे हैं हर रंग नाल है मजीठा सारग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथी निमख बचन प्रभु ही अरै बसेओ सगल भूख मेरे लाथे राउ कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मोहि तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे नैन त्रपतासे देख दरसावा गुर कर धारी मेरै साथी कहो नानक मैं तुल सुख पाया जन्म मरण पहलाथी सारग महला पंजवा रे मूड़े आन काही कत जाही संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल विख खाई राउ प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते तिस स्यों रुचना जाई नहीं जा राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरताल संतन स्यों बने आई सगल निधान करे मैं पाई कहो नानक जोत जम समाई सारग महला पंजवा
ओवं प्रेप्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे कसत गुर तौ मैं साज सिंगरिया रहो हम भूल हाँ तुम सदा भूला हम पातत तुम पातत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागरु लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर धीर उपकारी हम क्या बपरी जंतरिया गुर कृपाल नानक हार मिलयो तौ मेरी सुख से जरिया सारग महला पंजवा मन ओए दिनस तन परवाना सबल ते करी संयोग सुहावी सतगुर संग दयाना राउ तन सुभाग तन सुहागा तन दीत जिन माना यही तन तुमरा सब ग्रह तन तुमरा हियों की ओ कुरबाना कोट लाख राज सुख भाई एक निमुख पेख दृष्टाना जाओ कहो मुखो सेवक यह वैसी है सुख नानक अंत न जाना सारग महला पंजवा अब मोरो सहसा दुख गया और पाप सगल त्याग छोड़ी सतगुर शरण पया राउ सर्ब सिद्ध कार्य सब सबरी अहं रोग सगल ही खया कोट पराध खिन महें खाओ पही है गौरमेल हर हर कहया पंच दास गुर वसगद की नहीं मानो ने फुल निरपया आए न जावे न कत ही डोलै थिर नानक सहरा जया सारग महला पंजवा प्रभ मेरो एतुत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहाँ गुण गाई राउ खेल खलाई लाड लड़ावै सदा सदा अन्नदाई प्रतपाले बारिकी न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकी है बिस्तर न कबहू जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पय लिवलाई सारग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइय आसना अबर काऊ की जय सुखदाता प्रभ त्याय राउ सुख मंगल कल्याण जिस कारु जसी सरणी पाई है तिसें त्याग मनुख जो जे सेवा हो तो लाज लोन होए अजाई है एक ओट बकरी ठाकुर की गुरमिल मत बुध पाई है गुण निधान नानक प्रभ मिलया सगल चुकी महताई है सारग महला पंजवा ओट सदाणी प्रभ जियो मेरा दृष्ट न लियावो अबर काहू कहो मान महत प्रभ तेरा रहाओ अंगीकार की ओ प्रभ अपनाए गुर काड बिकाड लिया बिख कही रह अमृत नाम औखद मुख दीनौ जाई पया गुर पैरे जाई पया गुर पैरे कवन उपमान कहूँ एक मुख निर्गुण के दाते रह काट सिलक जाऊं अपना की नौ नानक सुख कनेराए सारग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बनासी पयो कृपाल जी सुखदाता होई सगल खलासी राउ अवर न को सूजै प्रभ बैन कहो को किस पै जासी ज्यों जानो त्यों राखो ठाकुर सब किश तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अबनासी गौ नानक मन आनंद भया है काटी जमकी फासी सारग महला पंजवा मेरो मान जत कत तुझ सुमारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरी ज्यो जानै त्यों पार राउ जब भूखो तब भोजन मांगै अकाहे सुख संघारै तब अरोग जब तुम संग बस दौ छुटकत होए बसरवारै कवन बसेरो दास दास न कौ थाप्यो थापन हारै नाम न बिसरै तब जीवन पाइय बिनती नानक हे सारै सारग महला पंजवा मन ते भय पौ दूर परायो आल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाउ गुरबचनात कमात कृपाते बौर न कत हूं तायो रहतो पाद समाध सुख आसन भगत वशल बिगृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप कराब ने आपे कहो नानक आप या पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणियाइयां शब्दों तंगा वो हरी के रामन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा आकार सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो कह मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वा जे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां वडियाइया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब उदित कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तैं सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पई हो सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो एह वास्तव तजी न जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लगतरियाए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवां।

तरसपयोई तरस पया मेहि रामत होई सतगुर सजण मिलया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहि रामत होई

जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिला राग गुरु जी की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्ता किया करते कवि विचार उचित कर गाव सोहिला। सिमरियो सिरजनहारो तुम गावो मृगर पौका सोहिला। हो वारी जत सोहिला सदा सुखोय राहु। नैत नैत जीवड़े समालियन देखेगा देवनहारू। तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाती कवन सुमार। संबत सा लिखिया मिल कर पावो तेल देव सजण सीसड़ियां जो हो सह सुमेल। कर करे हो पहुंचा सड़े इनत भवन सदनहारा सिमरी है। नानक से देहि अवन राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको विस अनेक। बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तोय राव। विश्व जसियां कड़ियां पहरा दिती वारी माह हुआ सूर जे को रुत अनेक। नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल राव चंद दीपक बाणी तारिका मंडल जनक मोती। धूप माल आनलो पवन चवरो करे सगल बंदराई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत तेरी राव। सहस तब नैन नैन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नना एक तोही। सहस पद बिमल मैन एक पद गंध बैनो सहस तब गंध चलत मोही। सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसद चरण सब मैं चरण होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो तिस भाव है सो आरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभित मन वन जन मोहया ही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिं कहो हे जाते तेरा नाहे वासारा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर वो भरिया मल साधु खंडल खंडा ही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर ले वो मंडल मंडा ही। कर साधु अंजलि पुन वड्डा ही कर डंडाओत पुन वड्डा ही रहाओ। साकत हर साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडा ही। ज्यो ज्यो चलहे चुभै दुख पावे जिम काल सहे सिर डंडा ही। हार जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन मरण पव खंडा ही। अविनाशी पुरख भय परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा ही। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख बड़ बड़ा ही। जन नानक नाम धार टेक है हर नाम ही सुख मंडा ही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हरला आगे बसन सुहेला। औध कटै दिन सरहणारी मान गुरमिल का सवारी रहाओ। ए संसार विकार सह से मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पिया वह रास अकथ कथा तिन जानी। जा को आई सुई बिहा जो हर गुर ते मने वसेरा। निज कर महल पाव सुख सह जे बहुर न होएंगो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते शब्द मन की पूरे। नानक दास ए है सुख मांगे मोह कौ कर संतन की दूरे। अंतर जामी पुरख बधाते शरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे मोह कौ कर संतन की दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दया गए हर दास हमारी।

हम सर दीन दयाल न तुम सर अपतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै। दसा पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप सतगुरु साहिबानी पावन पवित्र धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हजूरी अंदर जुड़ बैठे सरबत माई भाई सिख संगत संध्या वक्त दे सजे दीवाना अंदर हाजरी भर रहे हो, लाह प्राप्त कर रहे हो गुरु चरणा विच जुड़ के। दासरियां दे जत्थे नूं कुछ समा सतगुरां दे दर्शन ददारियां दा गुरु चरणा विच हाजरी भरन दा सिख संगतां दे रूबरू प्राप्त होया है। कुछ कहण दी असीस बख्शदे होए सब तों पहलां गुरु की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। सारी संगत गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब जिन्हां दे इतिहास उन्हां दे जीवन की कथा आपां सरवण कर रहे सी कश्मीर की धरती ते भाई सेवादास नूं रहमतां दे नाल नवाजदे भाई कट्टू जी का जिक्र गुरु ते सिख की अभेदता, क्योंकि मेरे सतगुरु अपने गुरसिखां नूं इन्नी वडियाई इन्ना माण बख्शिश करते ने। अज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के जीवन संबंधी जो लगातार विचार कर रहे हैं तां कि उहदे सतगुरु पातशाह महाराज जी ने भी तो अपने गुरसिखां नूं कितना वड्डा माण दिता है खालसे पंथ की साजना करके। मेरे दातार जी ने साजिया भी है तो नवाजिया भी है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे माहे हो करो निवास। तो आओ इतिहास से नजर मारिए जो आप जी लगातार रोजाना सरवण कर रहे हो। इतिहास इस स्थान तक पहुंच चुका है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जदों साहिबजादियां दी शहादत तो बाद इस चमकौर साहब की हवेली के अंदर सवेर दे चढ़ते सूरज के नाल जदों जंग आरंभ होना, मेरे दातार आप मैदाने जंग विच जाके दुश्मन का टाकरा करना चाहते ने, पर पंजा प्यारिया ने आण के मेरे गुरदेव कलगीधर पातशाह महाराज नू आण के कहना कीता महाराज पंथ तुहानू हुक्म करदा। मेरे साहब सच्चे पातशाह कहिंदे हुक्म तां सिर मत्थे प्रवान है, पर एक बेनती प्रवान कर लियो मैदाने जंग विच जाण तों ना रोकियो। प्यारे भाई दया सिंह कहिंदे महाराज हुक्म कहदा होया जिहड़ा पुछ पुछ के कीता गया। महाराज इह पंथ दा हुक्म है, तुसीं इस चमकौर साहिब दी हवेली दे विचों चले जाओ तां कि तुसीं मैदानी इलाके विच जाके जिथे भी सिखी का प्रचार करोगे, जिथे भी चौंकड़ा ला के बह जाओगे, हजारां संगतां तुहाडे चरणां विच जुड़ के तुहाडे उपदेश की कमाई करके चढ़दी कला विच आ जाणगियां। खालसा पंथ चढ़दी कला विच रहेगा, फौजां तैयार पर तैयार हो जाणगियां। महाराज जे तुसीं इस समय मैदाने जंग विच जूझ के शहीद हो गए, कौम की वागडोर संभालण वाला इस समय अनुसार कोई नहीं होएगा। महाराज भावे लखां सिंह होण पर गुरु नहीं प्राप्त हो सकेगा। मेरे दातार इस वक्त लोड़ है, समय की मंग है, इस करके पंथ तुहानू हुक्म करदा इस हवेली विचों चले जाओ। मेरे दातार जी ने पंजा के सिर नवा दिता, पर जाने तो पहला अपने बिल्कुल हम उम्र ते हम शकल भाई संगत सिंह नूं खलियार के अपने हथी अपने सिर ते सजी हुई कलगी तोड़ा उतार के भाई संगत सिंह दे सिर दे उते दस्तार दे उते अपने हथी सजा दिता। अपना चोला अपनी पोशाक भाई संगत सिंह नूं पहना दिती है। युद्ध नीति इस गल की मांग करती है भी जे इस हवेली विचों 10 लाख दीआं फौजां दे घेरे विचों निकल के जाना है चंगी व्योतबंदी दे अनुसार ही निकलिया जा सकता है, कोई थोड़ी जी गल नहीं। 10 लाख का घेरा इन्ने वड्डे घेरे विचों दुश्मन नूं शिकस्त दे के निकल जाना कोई सौखी बात है? महाराज दे हुक्म अगे सारिया ने सिर नवाया, हदायत की मेरे कलगीधर पातशाह ने इस 2 मंजिल बने हुए मकान में तुसा ने बह जाना है ता कि दुश्मन दल नूं इस गल का भुलेखा बनया रहे भी गुरु गोबिंद सिंह अजे इत्थे बैठे ने। नाल जाण दी बात चली, यह गल तय है जेड़ा इस हवेली दे अंदर रहा सवेरे दुश्मन का टाकरा करदिया शहादत हो जानी है। जेड़ा गुरु दे नाल बाहर जाएगा हो सकता है इथों निकलने च कामयाब हो गया तो जिंदगी बच जाएगी, प्राण बच जाएंगे, पर किसी भी सूरमे ने अपना नाम पेश नहीं किया। पिता दार जी मैं चलांगा तुहाडे नाल। ये मेरे गुरदेव कलगीधर पातशाह महाराज जी ने हुक्म किया 3 सिंह साढ़े नाल जाएंगे। प्यारे भाई दया सिंह जी
प्यारे भाई धर्म सिंह जी ते भाई मान सिंह जी, बाकी रहिंदे सिंह सात अठ सिंह जिहड़े इस हवेली दे अंदर रहणगे, डट के दुश्मन दलों का मुकाबला करनगे। रात का पसरिया होया हनेरा इस हवेली दे विचों मेरे गुरदेव पातशाह महाराज निकले बाहर, आवाज दे के कुची टिब्बी ते आख्या, जे हिम्मत है फड़ लो सिखां दा गुरु जा रहा है। प्यारे गुरसिखो, उत्थे अज गुरुद्वारा ताड़ी साहब मौजूद है, जिस स्थान से सेवा निभा रहे ने सुर सिंह वाले महापुरुष संत बाबा दया सिंह जी, उन्होंने सेवा उस स्थान से चलती है। उस स्थान से मुख सेवादार के वजो बाबा करतार सिंह जी सेवा निभाते। ध्यान दो, मेरे गुरदेव पातशाह महाराज भी उस आवाज को सुनिया, हफड़ा दफड़ी मच गई दुश्मन दलों के अंदर, आपो अपने तंबुआ के अंदर सियाल की रुत निग लै रहे, आराम कर रहे ये फौजा ये जरनैल, अपन वाहे उठे सिखा का गुरु जा रहा है कि इस हवेली विचों 10 लाख के घेरे विचों निकल जाएगा, फड़ लो मार लो दिया आवाजा। एक पासे आवाज आ रही नहीं गुरु तो इस पासे है, आवाजा कई पासिया तो, प्यारे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, प्यारे गुरसिखो, पर इधर हवेली में नगारा खड़कदा ते आवाज आती गुरु तो इतने बैठा है। खैर, एक नीति सी, एक ढंग सी, ज्योतमंदी सी, प्यारे गुरसिखो, तन मेरे कलगीधर पातशाह शहीद होए सिंघां दे विचों दी लंघते जांदे ने, ओ इहो जिहा कौण होया संसार दे अंदर जिहड़ा अपने पुत्रां नूं शहीद पिआं नूं तक के कोलों दी लंघ जाए। माही कोई प्रीत दीआं मंजलां दा, माही कोई प्रीत दीआं मंजलां दा ऐदा मंजल मुकाम दा वेख्या ना, पैर पैर ते राज नूं मार ठोकर हीरे लाल लुटाम दा वेख्या ना, हंसा जिहा प्यारिया बच्चिया नूं झोड़ी मौत दी पाम दा वेख्या ना, ते तां कोई भी पुत्र दी लाश उत्ते नगमे खुशी दे गाण दा वेख्या ना। दशरथ डिग महल तो कूद कीता, दशरथ डिग महल तो कूद कीता, अखा ओले सी जदों संतान हो गई, मोर तुझ दे अथरू अंत कर गए, बोटी जिगर दी जदों वेरान हो गई, मृत्यु जदों अब मनु दी सुनी अर्जन, ढिली हथा चो तीर कमान हो गई, तान सैन जदों सुनिया पुत मरिया, राग बोलना बंद जवान हो गई, पर तन है कलगिया वालिया तू, तू ते आग्या अकाल दी मन लईए, कोई कहे ना पुत मरवाउण वेले पट्टी गुरा ने अखां ते बन लईए। मेरे कलगीधर पातशाह शहीद होए सिंघां ते साहिबजादियां दे विच दी लंघ गए, इस हनेरे नूं चीरदे होए अगेरे तुरे गए फौजां दे विचों दी, फौजां आपस विच अपण वाहे वार करन लगियां, मिसाल ची किते मिसाल जगा के रस्ता दिखाउण दा यतन करदा है। मेरे गुरुदेव ने लाया निशाना, मिसाल सटा दिती धरती ते, हनेरा पसर गया, बस चार चफेरे मार लो ते फड़ लो दियां आवाजां। मारे कौन ते किनू मारे, अपनियां फौजां दे उत्ते वार करदे होए अपने हजारां जवानां नूं धरती दे उत्ते सुट बैठे। इधर ध्यान करिए, मेरे गुरुदेव सच्चे पातशाह तां इन्हां फौजां दे घेरे विचों लंघ गए। हदायत जिस अनुसार नाल दे साथी सिंघां नूं कीती सी, उस अनुसार अगे जाके मिल पैणगे, आपां अगे विचार करांगे। पर इधर सवेर होई, जेड़ा दुश्मन अज आसां ते उम्मीदां ला के बैठा सी, गुरु गोबिंद सिंह नूं अज हथ कड़ियां लाण विच असीं सफल हो जावांगे, अज गुरु नूं जेड़े कुछ उहदे नाल दे साथी होणगे उहनां नूं पकड़ लवांगे। सवेर होई, सूरज चढ़िया, दिन दे चढ़ा दे नाल इस बने हुए दो मंजिले मकान विच जिथे मेरे गुरदेव अज पोह दा सारा दिन बैठे रहे, अपने ख्यालां अनुसार और अपनियां नजरां दे नाल सिंघां नूं शहीद हुंदिआं तकदे ते सत श्री अकाल दे जकारे छड़दे रहे, अज उत्थे भाई संगत सिंह जी बैठे ने, कलगी तोड़ा सजा होया सिर उत्ते, दुश्मनां नूं इस गल दा हौसला होया, ओह एवें भुलेखे विच रात अपणिआं नूं मारदे गए। गुरु गोबिंद सिंह तां हवेली दे अंदर अजे तक भी मौजूद ने, इत्थे बैठे हुए ने, जिंदा चढ़ा होया। वजीर खां ने अपनियां फौजां नूं वधाया, ओ बहादरी ओ दिओ, कोई सिंह नहीं रह गए गुरु दे नाल, अगे वधो ते मार लो, अज हथ कड़ियां ला लेणियां चाहीदियां ने। इधर गुरु के लाल, गुरु के सिंघां ने इन सारिआं ने करके रहे करके गुरमता कलगियां वाले पातशाह महाराज नूं कीता याद,
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੋ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ, ਕਹਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖੁੱਲਿਆ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਖਤਮ ਰਹੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡਾ ਖੇਤ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਛੱਡੇ ਟਕਾਰੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨੌ ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਹੇ।

जाएगा। प्यारे गुरसिखो, पंछियों ने चहचहाट ला दिती, पर एह कह लो कवि ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहिंदा जदो पंछी आपो अपनी बोली विच भाषावां विच एक दूजे दे नाल बोलदे ने, उच्ची आवाज करदे ने, तेज पवन चलदी है, पत्तियां दा खड़ाक हुंदा ते कोई नूर आलाही सद ऐसा आउंदा, इन्नी तेज ना चलनी हवाए, पंछियों ना इन्ना रौला पाओ। अज दीन दुनिया का मालिक कलगिया वाला आनंदपुर का वासी धरती की हिक के उत्ते पिंड का सराहना ला के सुनता पे है। आओ जिस कदर मेरे गुरदेव सत्ते पातशाह नेत्र बंद ने अपना हाथ तलवार की मुठ ते रखिया होया, मेरे गुरदेव सत्ते पातशाह उस अकाल पुरख वाहगुरु के चरणों के नाल जुड़े हुए माछीवाड़े की धरती से जिवें सुते पे ने, उस वेले का नक्शा ढाडी जत्था इन आखणा विच हे।

रोवो ना बेटा हंसो, देख मुझको मैं शीश की भेंटा चढ़ाने चला हूँ। गिर गए जो मंदिर गिराए और अंगे, फिर से मैं उनको बनाने चला हूँ। जो जंजू को तोड़े और चोटी को काटे, वही तेज खंजर मैं खाने चला हूँ। मेरी बसी दुनिया उजड़ जाए बेशक, मैं हिंदुओं की दुनिया बसाने चला हूँ। मेरे बच्चे रोते रहे तो मैं खुश हूँ, मैं हिंदुओं के रोते हंसाने चला हूँ। करो सब्र बेटा, जाओ लौट पीछे, मैं धर्म का झंडा जो लाने चला हूँ। ना आंसू बहाना मेरी लाश ऊपर, मैं आंसू को बालम सुखाने चला। 9 साल की उम्र तन कलगी पर दातार, सचे पातशाह महाराज किसे दे दर्द नू ना सहार दे। आप गुरु तेग बहादुर साहब जी नू बेनती करदे ने, कहंदे पिता जी जे इन्हां लोकां दा धर्म खतरे विच है किवें बच सकदा है। तन गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे कोई धर्मात्मा, कोई सत पुरुष, कोई बंदगी वाला अपने प्राणा की आहुति दे दे। बाला प्रीतम गुरदेव सतगुरु कहंदे पिता जी है कोई ना, मैं दसा। मेरे लाल जी तुसी दस दियो पिता जी, सच पुछदे हो इस संसार दे अंदर तुहाडे वर्गा परमात्मा केड़ा हो सकदा है। ये कार्य आप ही कर लेना चाहीदा है। जे लखां लोग यतीम होण तो बच जाण, ये सौदा महंगा नहीं, ये सस्ता है, कर लेना चाहिए। प्यारे गुरसिखो, किसे नू यतीम हुंदिया नहीं वेख सकते, किसे दे पुत्र नू खत्म हुंदिया मुकदे दुनिया चो नहीं वेख सकते। उन्हां दा दर्द अपने हिरदे विच, आप यतीम होना प्रवान कर लेंदे ने कलगियां वाले दातार सच्चे पातशाह। दूजियां दे दर्द नू अपने हिरदे विच वसा के, एक शहर ने बड़ा सोहना लिखिया, कहिंदा सिर दे के पूरा सवाल करिए, सिर दे के पूरा सवाल करिए, खाली किसे सवाली नू मोड़िए ना। पत्थर आप जहान दे चल लईए, शीशा दिल पर किसे मन दी मोहरी अंदर, बेड़ी फथी अपनी सब कुछ वार दईए, दीदी बां फड़िए मुड़ के छोड़िए ना। तन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने मनुखता दे भले वास्ते अपने गुरदेव पिता जी नू तोड़ दिता है, जिन्हां दी दिल्ली दे चांदनी चौंक दे अंदर शहादत हो गई है। अज धन गुरुदेव पातशाह महाराज कितने अपने शहीद पिता के शीस नकते ने, उन्होंने शीस का संस्कार आनंदपुर साहब की धरती से करते ने। पर अज कहोजा वक्त आया, अज मेरे कलगीधर पातशाह महाराज इस समय तो लगभग 29 साल बाद चमकौर साहब की हवेली दे विच अपने पुत्रां नू मनुखता के दर्द नू अपने हिरदे विच रख के अणख ते शांति जिंदगी जीवन वास्ते लोगों नू प्रेरित करते हुए, दबे कुचले ते ढहिंदे कला वाले मनां नू उच्चियां करते हुए मेरे गुरदेव पातशाह अज सारा कुछ वार के मनुखता दे उत्तों आप माछीवाड़े दे संघने जंगल दे अंदर एक बाग विच टिंड दा सराहना ला के सुते ने। नजदीक कुछ पए हुए पत्र, कुछ पईयां होईयां टहणियां एक दीवार दी तरह ने। इधर मेरे गुरदेव पातशाह महाराज जी के नाल जो इस चमकौर साहब की हवेली विचों नाल तुरन वाले साथी निखड़ गए सन, ये मेरे दातार जी के बख्शे हुए निशानदेही के अनुसार चलते चलते इसे ही माछीवाड़े के जंगल विच, इसे ही खूह के उत्ते इस बाग के विच आण पहुंचे ने। जेड़ा खूह गुलाबे ते पंजाबे का है, जेड़े कदे मसंद होया करदे सन प्यारे गुरसिख। मेरे दातार सच्चे पातशाह महाराज जी के नजदीक पहुंच गए। इतिहास कहता है उस वेले मेरे दातार जी दे दर्शन तक कीते इस बाग दे रखवाले ने, आए हुए इन्हां तीन गुरसिखां दे दर्शन करके उन्हां नाल विचार करन तो बाद कहण लगे तुहाडे वर्गा एक और थोड़ा जा अगेरे धरती दी हिक दे उत्ते लम्मा पिया आराम कर रहा है। समझदिया कोई बहुती देर ना लगी, प्यारे भाई दया सिंह जी अपने साथियों समेत अगेरे वधे, दातार जी दी उंगल विच पिया होया गुल स्त्राण जेड़ा चमका मारदा है, तलवार की मुठ से पिया होया मेरे गुरदेव सतगुरु पातशाह महाराज जी का हाथ नेड़े होके प्यारे भाई दया सिंह जी ने तकिया, चरणा ते नमस्कार करके जगाना चाहते ने। पर मेरे गुरदेव के पैरों में पे हुए छाले से वगदा होया खून तक के मन भर आया। सुचा चोड़ा जेड़ा जंड से करीर की लपेट में आता थां थां तो लीर ले चुकया, पर कमर कसा बजा होया मेरे गुरदेव सतगुरां दे लक दे नाल
ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮਖਮਲੀ ਕਬੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੁਸੰਗਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਮਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤ ਗਾਵਿਆ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਪਿੰਡ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰੇ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਣ ਕੇ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਦੁੱਧ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ये हकीकत है बहुत बड़ी जो है सच्चाई है कि महापुरुष की चरण छो नाल पानी पानी नहीं रहता, पानी अमृत हो जाता है। खाक खाक नहीं रही, खाक अक्सीर हो जाती है। उन बाणी दियां जिहड़ियां लहरां ने, कोई कीर्तन हो रहा हो तो वह जिहड़ियां लहरां ने कीर्तन दियां, नाम जप दियां, सिमरन दियां, वह पानी ते खाक नूं ज्यादा मुतासर करनगियां, इतनी मैरिज कर गए बहुत प्रभावित करनगियां खाक नूं और पानी। धार्मिक पुरखां ने बहुत पुराने समय तो खोज की है कि नाम जप दा, नाम सिमरन दा पानी ते खाक दे उत्ते बहुत वड्डा असर पैंदा है। खाक अक्सीर बन जाती है, पानी अमृत बन जाता है। आखिर असीं पंज बाणियां दा पाठ करदे आं, कंडा फेरदे आं ते फिर पानी अमृत बनदे उत्ते ते अच्छे पैर गुरबाणी दीआं तरंगां ने और इस पानी च मिश्रित होंदियां ने। इस तरह का होर किधरे भी निजाम देखने को नहीं मिलता। इस वास्ते पानी पानी नहीं, ये जल जल नहीं, अमृत है, क्योंकि अमृतमय बाणी का संयोग हर वक्त बने हुए हैं इस सरोवर के नाल। सो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, कर इसनान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए, संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर ध्याइये, अन दिन सुकृत करिए, दिन रात तू यही शुभ कर्म कर, तू उठदियां बैठदियां बस जप, वाहेगुरु वाहेगुरु जप, यही सुकृत है। इस तो वड्डा होर कोई शुभ कर्म नहीं, यही अध्यात्मक इसनान है, इस तो वड्डी होर कोई पवित्रता नहीं। हाँ जी, अगलियां पंक्तियां सुन। साहिब कहिंदे ने संत का जिहड़ा बनाया रस्ता है, धर्म का जिहड़ा बनाया हुआ रस्ता है, वह की है? वह पौड़ियां ने। तो मार्ग इस तरह का जमीनी नहीं कि भज के चल पाओ, तो पौड़ियां ने। पौड़ियां से सहजे सहजे चलना पैंदा है, पौड़ियों से कोई भज के कितनी दूर तक जाएगा? अरे पौड़ियां अनंत ने, चढ़ना है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, संत का मार्ग, गुरु का मार्ग, प्रभु का मार्ग कोई जमीनी रस्ता नहीं है, तो पौड़ियां ने, एक पहाड़ी रस्ता है। एक अवगट घाटी राम की, कैच रहे हो कवि, एक घाटी है, घाटी चलत बैल एक ठाका, चलो गौन छिटका। कबीर कहने घाटी पे चलदियां चलदियां मेरा मन रूपी बैल थक गया, सिमरन करदियां करदियां थक गया, नाम जपदियां जपदियां थक गया, साधना करदियां करदियां थक गया, पर अजे मैं मंजिले मकसूद पे नहीं पहुंचा। तो चढ़ना एक पौड़ी। धर्म जमीनी मार्ग नहीं है, पौड़ियां, और इस पौड़ियां ते सुरत ने चढ़ना। इस पौड़ी के उत्ते सुरत में सहजे सहजे चढ़ना है, तो चाड़न लग्या उपजाई होंगी है, लाजमी होंगी है। इस वास्ते हर बंदे को जप नहीं हो सकता। जप का मतलब कि सुरत में उच्चा चाड़ना, पानी निमाण की तरफ अपने आप जाता है, उपर चाड़ना हो तो प्रैशर चाहिए, दबाव चाहिए, सुरत में उपर लै जाना, बड़ी करड़ी साधना चाहिए, कड़ी जप। इस वास्ते साहिब कहिंदे गुरु का मार्ग, संत का मार्ग, धर्म का मार्ग जमीनी मार्ग नहीं, पौड़ियां ने, तो पहाड़ी रस्ता है। कोवड भागी पाए, इस रस्ते में कोई बिरलावट भागी जो है अबूर करता है, प्राप्त करता है चढ़ चढ़ के। मैं फिर अर्ज करा, आखण औखा साचा नाम जोड़ा कह दिता है मेरे पातशाह ने, जप के कभी देखना बहुत औखा है। वाहेगुरु वाहेगुरु मनुख इंज उचारण करे तो इनू कन नाल सुने, लफज मैं फिर दोहरा दें, कि जब तुम सुनने बैठोगे तो नहीं सुनोगे, वाहेगुरु वाहेगुरु रचना कर भी रहेगी सुनोगे नहीं, ध्यान किसी और पासे हो जाएगा, सुनते ता सकोगे जो ध्यान हो। धुन ध्यान की साधना, यह शब्द सुरत की साधना, ये पौड़ियां ने, यह चढ़ना, यह दुखम है, ये मार्ग औखा है नाम सिमरन का। साहब कहने कोवड़ भागी उपाय, वो विरलावड़ भागी इस मार्ग न अबूर करके मंजिले मकसूद से पहुंचता है। हाँ जी, इस पौड़ियों से चढ़ के

दुर्लभ मानु खुद है राम नाम उर में गयो जाकर सम नहीं कोए जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए जय सिमरत संकट मिटे

ना उत्तर पार रहाओ भूले को गोर मार्ग पाया अवर त्याग हर भगति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई

गुरु ही वड्डा है और गुरु की वड्डाई इस विच है कि उसने सानू मौत तो रहित कर दिता है, उसने जन्म तो रहित करता है, उसने आत्मा नाल मेल दिता है, उसने संसार नू फानी इकरार दे दिता है, उसने ये जना दिता है शरीर एक तरह है, ऐसा तन छड़ के जाना पड़ेगा। सच है ये शरीर सारा छड़ के जाना ही पड़ेगा। साडे वड्डे वडेरे भी छड़ गए, साडे जिहड़े संबंधी ने वह भी छड़ रहे ने, असां भी छड़ जाना है, साडे बाद जिहड़े आने वाले होणगे उन्हां भी शरीर छड़ ही जाना है। ये सच्चाई है कि फिर इस तरह ही है भाई, सरां तो मुसाफर जे प्यार करेगा तो फिर मुसाफर नहीं रह पाएगा, सरां तो छड़ना ही पैना है। इसलिए जे शरीर नाल प्यार करोगे तो शरीर नू अपने कोले नहीं रख सकोगे, इसलिए शरीर नाल प्यार ना करो, प्यार वाहिगुरु नाल करो, प्यार सतगुरां नाल करो, प्यार सतगुरां दी वाणी नाल करो। प्यार जे करना ही है तो किसी बख्शी हुई रूह नाल कर लो, किसी संत नाल प्यार कर लो, किसी साधु नाल प्यार कर लो, किसी अमृतधारी नाल प्यार कर लो, जिस दे विच सतगुरु जी प्रगट ने उस नाल प्यार कर लो, तां ते प्यार निभ जाएगा। अपने आप नाल प्यार ना करो, ना इस्त्री नाल, ना बच्चे नाल, ना माया नाल, ना भरा नाल, ना दोस्त मित्र नाल प्यार ना करो, ये प्यार खत्म हो जाने वाला है, नाल नहीं रहने वाला। प्यार सतगुरु ना करो, सतगुरु तुहाडे अंदर रहें उहां तां जाइए जां इहां ना होए, उत्थे जाण दी बाहर जाण दी लोड़ तां पएगी जे इत्थे ना होवे। जिन्हां नूं वाहिगुरु की प्राप्ति होगी उह स्थिर हो गए, जिन्हों वाहिगुरु की प्राप्ति होगी उह सहज विच रते गए, जिन्हां नूं वाहिगुरु की प्राप्ति हो गई उह सचखंड जा विराजे, जिन्हां नूं वाहिगुरु की प्राप्ति हो गई अमृतधारी सिंह बन गए, जिन्हां नूं वाहिगुरु की प्राप्ति होगी गुरु उन्हां दे अंग संघ हो गया। भाई जिन्हां दे गुरु अंग संघ हो गया उन्हां दा कोई बाल विंगा भी नहीं कर सकता। जाम गुरु होए लख, जाम गुरु होए बल, लख बाएं क्या कीजे, लख बाहां भी कठियां होण जोर वालियां उह साडा विगाड़ नहीं सकदियां जदों गुरु साडे अंग संघ होवेगा। तो अंग संघ गुरु किन्ना दे है, गुर सिखां दे अंग संघ है, गुरमुखां दे अंग संघ है, नाम दे अभ्यासियां दे अंग संघ है। जितना समा नाम जपने उतना समा गुरु अंग संघ है। इसलिए वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, वाहिगुरु सुनो और वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु विच लीन हो जाओ। गुर प्रसाद उर्द कमल विगास, अंधकार में भया प्रगास। गुरु अर्जन साहिब महाराज के पास जड़े सिख सन उन्हां विचों कोई योगी भी सन, योगी लोग इस ते विश्वास करते ने, उन्हां दी बात यह होंदी है कि जिन्नी देर तक कुंडलनी नहीं खुलदी उन्नी देर तक आत्मा साक्षी नहीं होंदी, यह योगियां दा विचार है। गुरसिखां दा विचार यह है कि जिन्नी देर तक मन नहीं उलटदा उन्नी देर तक आत्मा साक्षी नहीं होंदी। महाराज ने यह वचन कह के दोवां नूं शांत कर दिता है। गुर प्रसाद उर्द कमल विगास, साडे अंदर जिहड़ा नाभी कमल फुल है मूदा हो गया क्योंकि पैरां भार चलन लग पए हां। जदों इबादत विच बैठिए कि कैसा दर्शन अपने आप दा हुंदा, ऊपर चरण तले आकाश, साडा सिर थले हो जांदा, साडे पैर उपर हो जांदे ने, यह अपना दर्शन है। इबादत विच ऐं भी लगदा जिवें असी खूह विच डिग पए हां, ऐं भी लगदा असी जिस तरह धरती विच गड्डे गए हां। कई वारां डर भी आउंदा अभ्यासियां नूं, डरन वाली लोड़ नहीं, ये बहुत वड्डी तरक्की होने जा रही है, अगले पासे तुहाडे आत्मा खड़ी है। गुर प्रसाद उर्द कमल विगास, समझण दे लई ऐं समझ लो जिस तरह कौल मूदा पिया होवे, कोई बर्तन मूदा पिया होवे, उत्तों अमृत की धार वगरी होवे उस कौल विच।

0: गुरु
1: धन धन गुरु अर्जन साहिब महाराज आपने बड़ी कृपा की थी सानू बच्चियां नू नाम की दात बख्शी है दर्शन दिता है आपने लड़ लाया है पातशाह असी जैसे भी हाँ आप दे हाँ नीवे हाँ उच्चे हाँ चंगे हाँ माड़े हाँ ज्ञानी हाँ अज्ञानी हाँ जैसे भी हाँ पातशाह आप जी दे हाँ आप इस तरह कृपा बनाई रखना अपनी आग्या विच रखना अपना नाम जपाना जिन्हें माई भाई प्यार नाल आपके चरणों में आए ने नाम दियां दातां बख्शनियां हाजरी लेखे लाने अपने दरों परों सोझी बख्शनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहिब।

0: الحمد لله.
1: ਕੇਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: Agar ta pradan karne sahiban di huzuri de aaye mukhwas satguran da hukm nama such buddhi anusar is de arth bhav arth te maujooda daur diyan kuch gallan vicharan aap ji de samaksh bhet karan। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਕ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 100 ਪਦੇ ਨੇ, 5 ਪਦੇ ਨੇ, 8 ਪਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੰਦ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਨੇ, ਤੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਆਲਮ ਲੋਕ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤਾ ਸੁਰਸਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਲੋਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ गणेश की पूजा से सरस्वती की पूजा, जो कोई साहित्यिक सम्मेलन है तब पहले पूजा सरस्वती की, जो कोई आर्थिक सम्मेलन है तब पहले पूजा गणेश की। इस तरह यह सिलसिला साढ़े दौर जो है सनातन मध्य बड़े पुराने समय तो चले आ रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध में अपने ये विचार दिते, अगर सिद्धि दाता गणेश है और बुद्धि दाता सरस्वती है तो फिर परमात्मा की तो कोई लोड़ ही नहीं। बंदे नु दो चीजा चाहिए ने, सिद्ध और बुद्ध। बुद्धि विच सारा ज्ञान आ जाता है, सिद्धि विच सारी संपदा आ जाती है। तो सारी संपदा बंदे नु मिल जाए, सारा ज्ञान बंदे नु मिल जाए तो होर किसी चीज की फिर लोड़ रही नहीं, मनुख के अंदर कोई भुख रही नहीं। पर परमात्मा तो छुट परमात्मा नु एक पासे रख के सनातन मत ने इस दुख की पूर्ति गणेश से सृष्टि नाल जोड़ी। जो सृष्टि जो है वो बुद्ध दाता है और गणेश जो है ये सिद्धि दाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगलाचरण आरंभ किया है उसका पहला अक्षर है इक। इक ओंकार, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पहला अक्षर इक। और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो मंगलाचरण है, गुरमत जो मंगलाचरण है उसका पहला अक्षर है इक। जपजी साहब का जो मंगलाचरण है उसका अक्षर पहला है इक। इक गिनती देते उंज हिंसा है, पर गुरु नानक की रचना तो हिंसा के रूप च नहीं निकलिया, एक खसम की बाणी ब्रह्म वाक के रूप च निकलिया है इक। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। फिर साहब ऐसा भी कहने एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप, अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। सारी अनेकता का जो आधार है वो एक है, इसे एक तो ये सारी अनेकता का जन्म है, एक मूल है, एक जो है आधार है। लेकिन एक ने ही अनेका रूप धारण किए हुए ने। जो अनेकता है इनू संसार कहने ने, जो इस है वो करतार है। जिथे तक आत्मा का गल है, विचार चलेगी आत्मा की उसे इस है साढ़े शरीर दे। पर जिथे तक शरीरक संबंध की गल आएगी तो रूप बड़े ने। हुण एक बंदे दे सिर्फ कोई एक ही रूप दे उत्ते उसकी होंद नहीं खड़ी, अनेका रूप ने। एक बंदा जे किसी का प्यो है तो फिर किसी का पुत्र भी है, जे किसी का पुत्र है किसी का पति भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी है। बंदा एक है तो रूप उसके इतने। मनोविज्ञानी कहते ने जब बंदा पुत्रां दे सामने पिता के रूप में जाता है तो चेहरे के हाव भाव से मानसिक मंडल कुछ होर होता है। उही मनुख जब प्यो दे सामने पुत्र के रूप में जाता है चेहरे के हाव भाव से मन के भाव कुछ होर ही आते। उही मनुख जब पत्नी के सामने पति के रूप में जाता है तो चेहरे का रूप से मानसिक मंडल मनुख का कुछ होर हो जाता है। उही मनुख जब मित्र के सामने मित्र के रूप में खड़ा होता है, पड़ोसी के सामने पड़ोसी के रूप में खड़ा होता है तो चेहरे के हाव भाव से मानसिक संस्कार कुछ होर आते हैं। उही बंदा जब गुरु के सामने सिख के रूप में खड़ा होता है तो चेहरे के हाव भाव से मन दिया तरंगा कुछ होर आदि ने। हुण बंदा एक है तो रूप इसके इतने ने। यह किसी का सिख भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी है। जितने रूप पुरुष दे ने उतने ही ये रूप नारी दे ने। जे नारी किसी की मां है तो किसी की भैन है, किसी की धी है, किसी की पत्नी है, किसी की सहेली है, तो किसी की सिखणी है। मनुख पूरन ओही है जिदे ये सारे रूप बेदाग हो। सारे रूप मैं हैरान हाँ जिन्हों के हथ सता आई है, कई दफा देखी है समुचा देश से ओदी सारी ताकत किसी के हथ समेट दईदी है, तो कम से कम ओदे सारे रूप से देखने चाहिए ने। किधरे ऐसा तो नहीं ओदे सारे रूप दागी ने। जो मेरे पढ़न दे चाया चंगी पुत्री नहीं साबित हो सकी, पिता पिटदा ही रहा, آلے دوالے دے بزرگ مخالفت کردے رہے سکھاں دا دل توڑ کے اور چنگے چنگے بزرگاں دی وچاراں تے لت مار کے انہیں قدم چکیا چنگی پتری نہیں ثابت ہوئی. اگاں چلیے پھر چنگی پتنی بھی نہیں ثابت ہوئی. پتی ہسپتال دیکھ بیمار پیا رہا طلاق ہوئی پوچھن تک نہیں گئی چنگی پتنی نہیں ثابت ہوئی. اگاں چلیے جو کچھ ماں تے پت دا جھگڑا منظر عام تے آندا رہا اتوں ایک گل سپشٹ ہو گئی چنگی ماں بھی نہیں ثابت ہوئی. پھر ہور میں اگے چلا کہ جو میں دیکھیا چنگی سچ بھی نہیں جو ہے ثابت ہوئی. رات نو 12 بجے نو نو گھروں کٹ چلے گا. پھر چنگی دادی بھی نہیں ثابت ہوئی. پوترا روندا ہی رہ گیا پچھتا ہی رہ گیا. جو چنگی تھی نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی پتنی نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی ماں نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی سچ نہیں ثابت ہوئی, جو چنگی دادی نہیں ثابت ہوئی, کما کرنی وہ چنگی راج پاٹ کی کرندہ کس طرح ثابت ہوئے گی. منک دے ان سارے روپاں تو ہی اندازہ لائے دا ہے کہ واقعی یہ منکتی ہے. کمال دی گل زندگی دے ہر پہلو دے جس دی زندگی دعوی ہوئے تے سمچا دیش او دے ہتھاں چ دے دیتا جائے تو دیش برباد نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہے, دیش تباہ نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہے. میں عرض کر رہا سی جیسے اکال پرش ایک ہے تے ایک ہوندے ہویا او دے روپ انیکاں نے, اس نے یہ نیم منکھ دے نال بھی لاگو کر دیتا ہے تے منکھ دے بھی روپ انیکاں نے. جے پرش کسے دا پیو ہے, کسے دا پتر ہے, کسے دا پتی ہے, کسے دا پڑوسی ہے, کسے دا متر ہے, اسی طریقے نال یہ سارے روپ ناری دے نے. تے چانک نے بھرتری نے اور بدر نے اپنے نیتی درپن وچ لکھے ہے انہاں تین مہاپرشاں نے راج بدر نیتی درپن تے تیسرا راج یوگی بھرتری دا جے دا نام ہے نیتی شتک. یہ تین گرنتھ راجنیتی دیتے ہیں تے تین مہاپرش اس گل تے زور دے دے نے کہ راج سنگھاساں تے جد کسے نو بٹھاؤ تے ویکھ لینا وہ سماجک زندگی کی ہے. اگر وہ سماجک زندگی دے کامیاب نہیں ہے, سماجک زندگی اس کی ساری دعوی ہے تو سیاسی زندگی اس کی پوتر نہیں ہو سکتی, اس کی پاون نہیں ہو سکتی, بے داغ نہیں ہو سکتی. تو انج لگتا ہے صدیاں دی جڑی اس دیش دی غلامی ہے نا انہاں نوں بندہ چنن دی جات وی نہیں آندی. حالانکہ چون دے تے ساڈے سدگوراں نے تے بڑا زور دتا. انہاں نے سری چند نوں ایک پاسے کر دتا, لکھمی داس نوں ایک پاسے کیتا, چنے تے لینا چنے. اور پھر سوال کیتی گرو رام داس جی نے, پرمپرا تو یہ ہے کہ وڈا ہی پتر چنیا جاندا, ٹھکرا کے ایک پاسے کیتا, سب تو چھوٹے نوں چنے. یہ تھوڑی گل نہیں, چون دے تے گرواں نے بہت بڑا زور دیتا چون غلط نہ ہوئے. سارے دیش واسیاں نو بھی ادھکار دیتے گئے چونو نمائندہ جنوں سارا دیش سونپنا ہے, دیش کی سمپتی, دیش کی عصمت اور دیش کی سطح ہتھاں چ دینی ہے. تو دیکھو تے صحیح ہاتھ بے داغ نے کہ نہیں, ہاتھ پوتر نے کہ نہیں. یہ بالکل نہیں سوچا گیا. وہ ایک کارن کہ صدیاں دی غلامی نے سوچن دی سمرتھا ہی کھو دی ہے. پتا ہے یہ دیش کتنے سال غلام رہا ہے؟ عالم لوگ تے کہندے نے یہ دیش 2000 سال غلام رہا. افغانیاں دا غلام رہا, ایرانیاں دا غلام رہا, عربین لوگاں دا یہ غلام رہا. اتھے منگول آئے, اتھے ڈچ آئے, اتھے پرتگیز آئے, اتھے فرینچ آئے, اتھے انگریز آئے, یہ ساریاں دا غلام. فرائیڈ کہندا ہے جیڑا دیش ایک دن لئے غلام ہو جائے تو وہ ایک سال پچھڑ جاندا ہے, وہ دیش ایک سال پچھڑ جاندا ہے. تو جیڑا دیش ایک سال لئے غلام ہو جائے وہ ایک صدی پچھڑ جاندا ہے, 100 سال پھر انہوں سر چکن نو نہیں ملتے. تو جیڑا دیش 2000 سال کا غلام رہا ہوا ہے, کسی خود اندازہ لگاؤ اسے لاشائیں سن جاپتا ہے. اگلے جڑے آندے رہے قبراں تے راج کردے رہے مردہ سن سر. जीवदे जागदे मनुख देते इतना लंबा राजपाठ नहीं कीता जा सकता, इतने लंबे अरसे तक उन्हें गुलाम नहीं रखा जा सकता। मर चुके हैं, पता है मरे हुए की पहचान की आती है? मरे हुए की पहचान यह आती है, वैद लोग पुराना ढंग से भी हाथ पैर वेखो ठंडे तो नहीं पैगा, हाथ वेखते हैं पैर वेखते हैं तो ठंडे, हाथ पैर ठंडा तो मुर्दा, ये सबूत मरे हुए बंदे का, ये सबूत भी हाथ ठंडे पैर ठंडे। ये कला अजे भी वैदिक दुनिया की जो है चल रही है। 3 महीने पहले कितने मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, पटना साहब की गल है, मैं गुरपुरब से गया तो चेला भी सी, मैं हाजरी भी भरदा रहा, तो 2-3 सज्जन मैनू मिले इंज हाथ मिलाया, कहने लगे जैनी जी थोड़े हाथ बड़े ठंडे, फिर कहने लगे थोड़े पैर देख रहे हैं, पैर बड़े ठंडे सन, तो सारे मैं खिंच चले गए नहीं तुम आराम करो, हाथ पैर ठंडे होना सेहत अद्धी खराब, तो बिल्कुल ठंडे हो जाने तो मुर्दा। मैं फिर पुरानी परंपरा अजे भी चल रही और एक गल ठीक है, जिंदा रहने लई शरीर में अग चाहिए, अग नहीं चाहिए, कहीं अग ठंडी पै गई तो मुर्दा, बंदा मुर्दा। जिदे हाथ ठंडे हो गए, जिदे पैर ठंडे हो गए, तो क्षमा करनी अंदरों बाहरों ये देश ठंडा इतना हो गया कि जम के बर्फ कब्र बन गया, हाथ ठंडे पैर ठंडे, पैर ठंडे होवन तो उन्होंने चलन की समर्था नहीं रही सच के मार्ग के उ, हाथ ठंडे होवन तो सच कर्म से इनकलाब की दुनिया के छत्थां का अगे वधना बड़ा औखा हो जाता। मुर्दा ठंडा, ये जो ठंडा देश हो चुके असी, एदियां तलियां मलनियां शुरू कीतियां गुरु नानक ने, कितनी मैरिज करें वैद पता की कर दें, जब कोई हाथ पैर ठंडे हो गए कहने तलियां मलो, ये गर्माश आ जाए, खून का दौरा चल पाए, अंदर गर्मी का वासा हो जाए, ये अंदर जिंदगी की रोह पैदा हो जाए। गुरु नानक देव जी महाराज ने तलियां मलनियां शुरू कीतियां, कुछ खून में शरवानी आई, कुछ थोड़ा जिहा साह चलन लग्या, बहुत वड्डा इंजेक्शन ला दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, भारत की इस मुर्दा कौम नो जिंदा किया, तो उस जिंदा कौम का ना रखा खालसा। फिर एक ए भी नारा दिता भी मंग करो कि राज सत्ता हुण खालसे कोल होवे, खालस पवित्र कोल, और सारी दुनिया दे इक्को ही कौम है जो धार्मिक मंदिरां दे अरदास तो बाद अपनी प्रार्थना दे ऐ मंग मंग दिए ते राज करेगा खालसा, आखी रहे ना कोई दुखी ना होवे। राज प्रबंध उस खालिस पवित्र बंदे को लोवे जिदे नाल किसे दा हक ना मारिया जाए, कोई रोवे ना, कोई आखी ना होवे, कोई बेजार ना होवे। ते क्षमा करने इस 35-36 साल तो लगातार देखते आ रहे हैं, इस कौम का हर पहलू में हक मारिया जा रहा है, इलाका खोलो, पानी खोलो, बिजली खोलो, इन्हां दी बोली खोलो, सभ्यता खोलो, रूप खोलो, संस्कृति खोलो, धर्म खोलो, हर पासे दासा अशुद्धि ते अपवित्र हत्थां दी बहुत वड्डी निशानी। इस वास्ते साडी मंग है कि सता जिहड़ी है ये उन्हां हत्थां च होवे जिहड़े हत्थ खालिस ने, पवित्र में खुद ने, ताकि किसी का हक ना मारिया जाए। मैं एक दिन महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास पढ़ रहा थे, उहदे च इक गाथा है कि शिकार खेड के महाराजा साहब वापस आ रहे सन, की देखते ने एक झुग्गी दे बाहर कोई 75-80 साल का बुढ़ा हाथ दे किताब लई रो रहा सी, घोड़ा रोकया, घोड़े तो उतरे, तो उस बिरद बाबे को जाके कहन लगे रो क्यों रहे हैं, जईफ हैं, बुजुर्ग हैं, ये रोना बहुत गहरे दुख तो निकल रहे हैं। आखन लगा हां रोना ना ते होर की, क्योंकि देश का राजा एक सिख है। फिर नहीं मैं उस बुढ़े का फिर नहीं पूछा की था। महाराजा साहब कहने लगे देश का राजा एक सिख है तो ये तेनों की दुख है, तू क्यों दुखी है, तू क्यों रो रहे हैं। कहने लगा 20 साल लगातार मेहनत करके मैं सुनहरी अक्षरों में तर्जमा करके कुरान शरीफ लिखी है, 20 साल की मेरी मेहनत, कोई मुस्लिम बादशाह आंदा इनू तोशे खाने च रखा जाता, कोई मुस्लिम बादशाह आंदा इनू पढ़दा और इनू प्रजा भी पढ़ती और आम दुनिया तक मेरी ये कुरान शरीफ पहुंचाई जाती है, पर बदकिस्मती देश का राजा एक सिख है। सोने की मोहर की थैली उस शायर उस आलम के अगों रखी कि आखिया बाबा ये कुरान शरीफ मैनू दे, मैं तोशे खाने च रखांगा, सारे देशवासियों तक ये दीदार करावांगा, तो मैं तेनू होर भी माला माल करना है, तू मेरे राज दरबार च आवे। ऐ थैली मेरी भेटा के रूप में नजराने के रूप में प्रवान कर। खड़ा हो गया बुढ़ा, कहन लगे हैं मैं तो फिजूल रो रहा से, माफी मंगी, अपने शब्द वापस लै। तो इथों गल स्पष्ट हो गई, आखी रहे ना कोई, महाराजा रणजीत सिंह ने इस धर्म नाल राज पाठ चलाया, कोई आखी ना होया, बेजार ना होया, कोई दुखी ना होया, ते क्षमा करने इन्हां 35-37 साल विच राज प्रबंध इस ढंग नाल है चले हैं, किधरे असामी पे रोंदे ने, किधरे आंध्र प्रदेश पे रोंदे पे ने, किधरे कश्मीरी पे रोंदे ने, किधरे मुस्लिम पे रोंदे ने, और हुण जारो जार रुला के रख दिता पंजाब नूं ते पंजाब दे जो है सिखां नूं। तो खैर इस तरह की मंग है, ये साड़ी है, तो मैं इस तरह जैसे परमात्मा एक है उन्हें अपने मखलूक के भी अनेक रूप जो है बनाए हुए हैं, परमात्मा के अनेक रूप बेदाग ने, मनुख भी उ है जेदे अनेक रूप बेदाग होवन। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो शुरू होती है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक है और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है कि हे प्रभु तू एक है, अनेक है, अनेक है, फिर एक है। एक मूर्त अनेक दर्शन चीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिरे। तो मंगला चरण है शब्द उठे, एक है ओंकार, ओंकार शब्द इन शब्दों का जोड़ है, अकार उकार मकार, उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, एक ओंकार, एक तो उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है। वो जड़ा एक ओंकार है वो सत्य है, सदीवी है, कायम दायम है, हमेशा है। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, वो जो एक है उसको उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है, वो ओंकार है, वो जड़ा ओंकार है वो सत है, और वो जड़ा सत है वो गुरु है। एकाग्रता प्रदान करनी, वो गुरु है, चानना देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, और वो जड़ा गुरु है वो प्रसाद है, दयालु है, बख्शिंद है, कृपालु है। तो ये है मंगलाचरण, और अगे आप वाक श्रवण करो, एक दफा प्यार ना लाखो सतनाम। अज का जिहड़ा पावन पवित्र वाक अमृत वेले आया है, वो भी उस हरिमंदर साहब उस अमृत सरोवर के संबंध च आया है, जिसकी वकत के सताधारियों ने रज के बेहुरमती की थी, जिसने रज के बेअदबी की थी। रामदास सरोवर ना के इतनी गल से स्पष्ट है कि अमृतसर गुरुआ ने वसाया, गुरुआ ने बख्शिश दी, गुरुआ ने पवित्रता दी, और इस सारी दुनिया नूं सहजे सहजे पता चल रहा है कि सिख जगत दे कितनी कशिश अमृतसर ले क्यों है, सिख जगत दे अंदर तड़प इतनी अमृतसर दे ले क्यों है, और मर मिटण दी भावना इतनी क्यों है। मैं ते इतनी अर्ज कर रहे हैं, जेड़े शहीद हो गए उत्थे काबू च है, चारों पासे घिर गए, पर खिमा करनी ते खुल दिली नाल आजादी दे नाल शहीद होना आए ने, ते जिस कौम ने इस तरह की खुली दिल नाल आजाद होने जो है शहीद होने आन ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਲੀਆਂ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਗਰਮਾਹਟ ਆਵੇ, ਗਰਮੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੋਵਰ, ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਵਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਸਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਛਲੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜੋ ਹੈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਟੋ, ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ, ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਊ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਦਾਸੀ ਲੂਟੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਮੰਨੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜਨੀ? ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨੀ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਈ ਗਈ ਗੱਲ, ਬਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਚ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਇਤਨੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੁਹਾਵਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਧਰਮ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੂਸੇ ਲੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ प्रसिम अनेक ओवन
0: सोरठ राग दे अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज का बख्शिश भंडार हुक्मनामा परंपरा अनुसार इस दी व्याख्या दे नाल नाल अज दा ए दिन जिसनू दिवाली कहिंदे ने ते करीबन करीबन समुचे भारत देश सारियां ही कौमां सारियां ही संप्रदावां दी तरफों मनाया जांदा है और मनाया जा रहा है। इस देश विच केवल इक्को एक संप्रदा है जिस दे दीवे अज दे दिन बुझा के रख दिते गए हैं और ये कौम अज दिवाली नहीं मनाएगी। दिवाली न मनाने का मतलब इतना है तूफानी हवावां ने साडा दीवा बुझाया है, साडे घर अंधकार किया है और साडे चश्मो चिराग कुछ दीवे जेलां दे कुछ दीवे बुझा दिते गए, कुछ टिमटिमा रहे ने। इस तरह की दशा विच वाकई यह फैसला ठीक है कि कौम की दिवाली मनाएगी, पर प्रथम मैं आए हुए हुक्मनामे के विचार आप जी के सामने रखा तो मैं अज के दिन के संबंध में कुछ आप जी के सामने फिर विचार रखा। ऐसा ना हो कि हुक्मनामे के विचार फिर रह जाए तो साहिबां का पावन पवित्र हुक्मनामा जो अज आया है सीधी मूल पंक्ति इथों लवांगे। प्रभ पूरी लोच हमारी, प्रभु ने साड़ी लोचा पूर्ण कर दिती है। संत की लोच की हो सकती है, संत की टांग की हो सकती है, भगत की कामना भगत दी टांग लोचा। भगत किसनू वेखना चाहता है? लोचन तो लोचा शब्द बने हैं, लोचन कहने अखां नूं। जिनू वेखण दी अंदर प्यास होवे उनू कहने लोचा, अखां लोचन। ते जिनू वेखण दी बड़ी तड़प ते प्यास होवे लोचा। पर किसे बुरी वासना नाल किसे एक थां ते लोचन टिक जान उन्हों कहने ने लुच्चा। लोचा ते लुच्चा दो शब्द बड़े निकट वर्ती ने पर अर्थां दे जमीन आसमान दा भेद है। घूर घूर के वेखना, लोभ भरी दृष्टि नाल कामना भरी दृष्टि नाल घूर घूर के वेखना घूर दियां नजरां टिका देनियां। लोचन किधरे टिका देने, लुच्चा गाल बन गई भई ते लुच्चा है। बाल ते घूर घूर के वेखदा है, अखरी अर्थ ही बन देना लोचन अखां। ते इसे लोचन तो दो शब्द बने लोचा और लुच्चा। लोचा जिनू वेखण दी प्यास है, जिनू वेखण दी तांग है, जिनू वेखण दी तड़प है लोचा। ते लुच्चा जिथे घूर घूर के नजरां टिका दित्तियां गईयां, वेखण दी प्यास है तो दृष्टि कुछ होर, घूर के तकण दी दृष्टि कुछ होर। एक शब्द धार्मिक दुनिया विच उपमा वाला हो गया, एक शब्द ते गाल ही बन के रह गया लुच्चा। महाराज कहने प्रभु ने साड़ी लोचा पूरी कर दी। केड़ी लोचा सी? प्रभु नू वेखण दी, उन्नू वेखण दी जड़ी लोचा सी, उन्नू वेखण दी जड़ी प्यास सी। लोचा वेखण दी प्यास, वेखण दी तांग वो पूरी कर दी। पर किस द्वारा पूरी हुई, किवें पूरी हुई? महाराज कहने गुरु पूरे कृपा धारी, पूरे गुरुदेव ने बख्शिश कर दी, उन्हें सूझ ते समझ दे दी ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਜਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਨ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਨ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ, ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸੂਝ ਸਮਝ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸੂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਝ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸੂਝ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਮੁੱਖ ਮਨਮੁੱਖ। ਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ

19वां शब्द दूसरा पद। गुरु पिता बख्शिश करते हैं, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, जिथे किते मेरे सतगुरु जाके बैठ गए बैठ जाते हैं। सो थाम सुहावा राम राजे, ओही थां शोभनीक है, ओही थां भागां वाला है, जिथे सतगुरु बैठ।

तन तन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी आसा राग विच 19वां शब्द शंत सरलेख थले रहमत कर रहे हैं। तीसरा पद दो पदियां दी विचार पहले हो चुकी है, अज तीसरा पद गुर सिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे। हे प्रभु कुल ब्रह्मंडा खंडा दे राजे, प्रभु देव स्वरूप प्रभु गुर सिखां दे अंदर उन्ना दे मन विच प्रीत है, क्योंकि बहुत शब्द जेड़े सब सृष्टि वास्ते सांझे हन, पर कदी कदाई कुछ क शब्दां दी बनतर काड़त पावे ओ लागू ते सब ते ही हुंदी है, पर सतगुरु खास तौर ते गुरसिखां जिवें गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवै। इहदे च केवल गुरसिख वास्ते है, गुरसिख जिहड़ा कहाउंदा कि मैं गुरु दा सिख हाँ, सतगुरु इहदे च भी गुरसिखां दे गुरसिखां मन हर प्रीत है, उन्हां दे मन दी प्रीति है, प्यार है। की है प्यार? हर नाम हर तेरी राम राजे, मालक दा नाम। कोई पदार्थक प्रीति करके आंदा होवेगा, दुनियावी लोड़ा वैसे ए दर कर ऐसा, ए नहीं के दुनियावी वस्तुआं लोड़ा हन उस सिख ने होर कितों मंगड़ियां हन, इत्थे ही आपां बेनती करनी है। ते कोई ऐसी रहमत नहीं जो मेरा गुरु करदा नहीं, सब बख्शिशां रहमतां करदे हन, पर सच बख्शिशां दा पात्र बन के गुरसिख भुलदा नहीं। सारियां रहमतां बहुत वार ऐसा हुंदा है, दात प्यारी विसरिया दातारा। दात प्यारी लगदी है, दाता भुल जांदा है, पर गुरसिख दी निशानी सतगुरु जी जदों रहमत करदे हन ना, श्री राग दी शुरुआत ही कहिंदे हन, मोती तां मंदर उसरै रतनी तां होए जड़ाऊ। भावें इहो जे मंदर मकान उसर जाण जिहड़े रतना नाल जड़े होए हों, मोती तां मंदर उस

marque dinheiro. आपका कई बार शब्द पढ़ने सतगुरु मेरा सर्व प्रतपाले, सतगुरु मेरा मार जीवाले, मारदा भी है जीवंदा भी करता है। मैं हैरान होया श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सतगुरु ने आख्या मारने लिए भी, मारन लई भी शब्द है। जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू योदार, मारू लग गई जेड़ा मन काम को तो लोभ मोह अहंकार का स्वरूप बन चुका हो गए उस मन नू मारना पैना, ते मारन लई भी यह मारू राग है। गुरु का शब्द आराध्य है, नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू यो राग। ये नहीं मेरा जीवन ही दिंदा है, मारदा भी है। मैं एक बार कीती सी कि माली सियाना माली सफल माली किसनू आखते हैं, ये नहीं असि समझने माली का काम बूटे लाने हैं। मैं कीती सी नहीं भले हो जीवन में उन्ने बूटे लाऊंगा नहीं जिन्हें पटना है, माली का काम बूटे पटना नहीं पर पटने पैंदे ने। एक बूटा लगाने लई पता नहीं किन्नियां घा दियां तेरा किन्ने बेलोड़े बूटे पट के ते फिर उन्हूं एक बूटा लाने की थां बनानी पैंदी। हुण अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े बेलोड़े बूटे पैदा हो गए, बड़िया ले पखड़े दिया बूटियां पैदा हो गई। गुरु ने नाम का बूटा लाने, गुरु ने प्रेम का बूटा लाने, पहला वो बूटे नु मारना पैगा। गुरु यो करता है आखदा भलेगा जीवन मुक्त उन्हू आखीद, पहला गुरु के सामने आके अपना पहला आपा मार दे, आप मार अपनी हों खत्म कर। जो आप मर जाएगा ना फिर गुरु एक जीवन देगा, वो होएगा नवा जीवन, वो जीवन जेड़ा है उनका सफर प्रभु तक पहुंचा सकेगा, उनके कुछ परिवर्तन आएगा। सद्गुरु कहने लगे

क्यों? क्योंकि इस खंडम ब्रह्मंडम साजन वाला तू है। मैं पिछले श्लोक विच पिछले वार की पौड़ी विच पढ़ आया कि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दूजी कुदरत साजी है। इस सारी कुदरत का कादर तू है। मैं कि आखा तू कोई गलत सिरजना की है। इसलिए जो मैं हूं इस निगाह नाल देखना ना, विश्व संसार तुम जो देख दे एहो हर का रूप है। हर रूप नजर नहीं आया। हूं तो मैनू एहो ही खंड सच खंड दिस दे। हुण मैनू किसी आकाश दियां उचाइयां ते किसी पताल दियां गहराइयां ते किसी सचखंड नू ढूंढन नहीं जाना पैंदा, बल्कि सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड तेरी संजना ब्रह्मंड तेरी बनाई हुई है लुकाई, तेरे बनाए हुए आकार सच ने। क्यों? क्योंकि सच होने करके बदलते नहीं। किसी के हुक्म में नहीं शरीर में बदलते। शरीर की बनतर है मेरे रब ने जोड़ी बनाई है वो ही पैदा होंगी। कोई चाहे हिंदू के घर पैदा हो, मुसलमान के घर पैदा हो, ईसाई के घर पैदा हो, जी बनतर है मेरे रब की बदल नहीं सकता। कोई आखे मैं हैरान हाँ, अज भी देवियां पैदा होंदियां ने, बड़ियां देवियां ने ना अपने अपने रखाए हुए ने, गुरु मां देवी है होर देवी है। अज किसी देवी की चार बाहां नहीं लगदी। अज असी दो बाहां वालियां देवियां देखने हैं। पहला कभी चार चार अठ अठ बाहां वालियां देवियां की कारण किसी वो कल्पना तो नहीं थी। जी ऐसा हो सकता कि अज भी देवी क्यों नहीं चार बाहां अठ बाहां लवा लेंदी रब को, क्योंकि आकार जो ने बनाया वही रहना। कोई कल्पना जो मर्जी करके मूर्तियां फोटो बनाई जाए, अज भी देवी किसी अठ बाहां लवा। गुरु कहते जी

नजरिया बदल गया। हर चीज उस सच्चे नु पछाने जा रहे हूं एक दुनिया जिन्हों दुत्तर दुनिया आप दस जिन्हों आतिश दुनिया आप दस हूं गुरबाणी राही भी यो गल आखद सब दुनिया सुभान जे सच कमाई है गल तो सच भी है ना जिसे गुम जा सब दुनिया सुभान जे सच कमाई है सिज है दर दीवान आप गवाई है शर्त पूरी कर ले जीवन मुक्त होने लिए आपा गवा दिता आपा मर गया मुड़ के नवा जीवन मिलिया हुण ओ शर्त पूरी होने तो बाद दुनिया सुभान हो गई हुण दुनिया को संसार को डर नहीं लगता हुण कुदरत को भय नहीं होगा बल्कि कुदरत विचों कादर दिसदा है ते जेड़ी चीज भी देखदा है ना उन्हों देखदे ही मन विच सोचदा है आ भी मेरे पितम ने बनाई है सिफतां दी करनी शुरू कर दी सलाह तां उन्हीं शुरू हो जाती है इसलिए सलाह का वो विचार भी सच बन जाती है जिनी देर गुरमत दी गुरु दी रब दी विचार ना होवे उन्हें सच नहीं आखते तो जिथे रब दी विचार ना होवे उन्हें सत्संगत नहीं आख देंगे इसलिए तो गुरु ने आख दिता सत्संगत कैसी जानी है जिथे एक नाम बखाए क्योंकि विचार ही सच दी है उन्होंने जो सच के विचार से आते हैं उन्हें पता लगता है सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान तेरा हुक्म सच कभी चलता नहीं कभी कोई बदल नहीं सकता किसी के प्रभाव थले नहीं किसी के डर थले नहीं कि इतने बस नहीं वो हुक्म जेड़ा केवल अंदर नहीं फरमान होता है वह भी सच है कई ऐसे ने जिन्हों के हुक्म चलते ने पर चलाउंदे नहीं तेरा हुक्म भी है चलदा ते फिर तू चलाउना भी है ते कई बार ऐसा हुंदा जे जिन्हां दे हुक्म चलदे होण ओ जदों चलाउंदे ने ना उदों गलत वर्तों करदे सच दी वर्तों अज भी इसी देखदे जिन्हां दे हुक्म चलदे ने ओ अपनी मर्जी दे हुक्म चलाउण लग पैंदे पर नहीं हे मेरे रब तेरा हुक्म भी सच है ते तेरा चलाउण दा तरीका प्रमाण करन दा तरीका भी सच है सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान

नानक कार ना कथनी जाए। उनकी वड्याई इतनी वड्डी है क्योंकि वो किसे दा बनाया हो नहीं बने है। जी बादशाह बने है, सच्चा पातशाह है, जी दुनिया दा राजक है, सुल्तान है, तद भी वो किसे दा बनाया होया नहीं बने है। आपे आप है, अपने आप को पैदा होया। क्योंकि जड़ी कार है ना, जो कुछ उन्हें हुण तक साजिया ते जिस तरह कर रहे है, जिस तरह संसार की सिरजना की है, ब्रह्मांड की सिरजना की है, सिरजना करके संभाल रहा है, उसनू पाल रहा है, अपने हुक्म चला रहा है, इन्ना वड्डा काज, इन्ना वड्डा सारा सल्तनत का संभालना, यह दुनिया के किसी मनुख के वस की गल नहीं। आ छोटिया छोटिया स्टेटा के आगू जड़े ने वो अपनी स्टेट नहीं संभाल सकते। मेरा रब सारे संसार की संभाल पिया कर रहा है। कहन लगे हे मेरे मालिक, यो कारण है जिन्ना कुछ तू कर रहे है, तेरी कार जी है वह कभी नहीं जा सकती। मेरे को जबान विच वो शब्द नहीं, मेरे को जबान से वो तारीफ नहीं, जिस तारीफ में लफ्जा विच मैं तेरी किरत तेरी करनी नू कलम बंद जा जबान दे शब्द बंद कर सका। नानक कार ना कथनी जाए, कीता करना सरबर जाए। सब कुछ तू फिर अपनी मर्जी का बनाया, कोई ऐसा सलाहकार बोर्ड नहीं बनाया कि तुसी मैनू सलाह दो मैं इतने की करा। कीता करना सरबर जाए, अपनी रजा न कर। गुरु कहते हैं ये तो हो गया, जे इना कुछ देख लिया कि संसार अंदर जो कुछ हो रहा है, दुनिया अंदर जो सिरजना हुई सारी मेरे सच्चे पातशाह की है, तो उसे भी सिरजना की हुई है, इसलिए मैनू उनके विचों रब दिस रहा है। हुण ये गल गुरु नानक पातशाह जी ने आखी, गुरु अंगद पातशाह जी ने इसकी प्रोड़ता की। अगला श्लोक गुरु अंगद पातशाह जी कह लगी, यह जग सच्चे की है कोठड़ी। जेडे सच्चे खंड ने, सच्चे ब्रह्मंड ने, जेडे सच्चे लोग ने, सच्चे आकार ने, सच्चे दे बनाए हुए ने, सच्चे की किरत है। कह लगे वो सच्चा उसे किरत संसार ब्रह्मंड बैठा है। गुरु अंगद पातशाह कह

लो ऐसे रुकना चाहिए। इस संसार मेरे रब का घर है, घर का मालिक है, घर में बैठा है, तो हुक्म चला रहे हैं, हुक्म होता चल रहा है, तो करे जे किसी जाए मर्जी उन्हें चलती, तो उनकी मर्जी में चल रहे इस संसार अंदर की देख रहे हैं। एक ना हुक्म समाय ले, एक ना हुक्म करे विनाश, एक ना बहाने कढ़ ले। जीवन की रजा होंगी है, जीवन की मर्जी होंगी है, उन्हू पाउंद है, किसी ने खल जगन तो धंधे तो कढ़ लेंदा, किसी ने माया दे इस धंधे में फसा देंदा। है आखांगे तब इंसाफी रुकने वाले उनकी मर्जी का भी कुछ धंधे में फसया होया, हुक्म तो उसे ना करते इंद्र कुछ दो रहे हैं, यह बेआख ने जाके सारी चीज तो देख ली, किसी ने कोई है भी तो इस संसार अंदर देख लो, एक ना भाड़े कढ़ लै, एक ना माया बच्चे निवास। मैं एक बार की थी ख्याल करियो हुक्म होंगे चल रहा है, उनकी रजा में दूजा दखल नहीं दे सकता, तो यो ही नहीं दखल दे सकता जिमें किसी अदालत में बैठे हुए किसी जज के फैसले में कोई दखल नहीं दे सकता। हुक्म जज में चल रहा, उन्हें अज हुक्म सुना, आप ही कहना अज उसने फैसला सुना। कि अजीब गल है, एको ही केस में दो मुलजम अदालत में खड़े ने, एक नू बरी कर रहे हैं, एक नू फांसी की सजा दे रहे हैं, केस इक्को है, हुक्म उनका चल रहा है, कलम उनकी चल रही है, रजा उनकी चल रही है, कोई दखल नहीं दे सकता उनकी रजा में, क्यों कर रहे हैं? इनू बेइंसाफी आखोगे, इनू अपना बिगाड़ना आखोगे, अदालत चलनी ना, जे प्रभाव चला जाए, हुक्म उनका चल रहा है, पर फाइल जड़ी है वो मुलजम भी चल रही है, वो फाइल नू पढ़ उनके कर्मानुसार अपना फैसला दिता, हां उनके फैसले नू कोई बदल नहीं सकता, उनके कर्मानुसार उनकी फाइल के मुताबिक अपना हुक्म सुनाते, हां उनके हुक्म नू कोई बदल नहीं सकता, उनके कोल अधिकार है। एक ख्याल करो, गुरु कहते ने मेरे रब को अख्तियार है, उनके कोल शक्ति है कि इतना हुक्म समाय लै, इतना हुक्म करे विनाश, इतना भाने कढ़ लै, इतना माया विच निवास, पर कहने क्यों हो रहा, क्योंकि यह भे आख ना जा पी जे किसे आने रात। यह गल मैं क्यों आखा कि केड़ा मनुख ऐसा है जिन्हों वो मेरा मालिक समझे कि यह मैनू रात है, इन्हें जो कुछ किया जीवन में ठीक है। लो जिनी देर मनुख वो रात के गुण नहीं समझता कि प्रभु में की रात आ, यही गल गुरु ने समझाया। लो ऐसे सिखाना चाहिए, गुरु सानू जो सिखाता ना जो पढ़ाता वो यो ही पढ़ा है, कि भलिया आ गल रब न चंकी लगती है या नहीं चंकी लगती, जी नहीं चंकी लगती वो ठंड के मत कित ऐसा ना हो रात ही ना आवे, ऐसा ना हो फिर आखेगा मैनू सजा मिली है, सजा कोई उन मन तेरे वास्ते दुश्मनी तो नहीं, तो न्याय है, वो तो इंसाफ का घर है, सच भी आऊ है, लेकिन तेनू पता होना चाहिए मेरे केड़े गुना, मेरे केड़े अवगुण, मेरे केड़े कर्म ने जिन्ना कर्मा ने मेरे मालिक तो मैं दूर कर देने, तेनू मैं भावना नहीं, आप रोज पढ़ने कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। गुरु कहते हैं रजा उनकी चल रही है, हुक्म उनका चल रहा है, जो कोई फैसला दिता अपनी रजा मुताबिक दिता, किसी वकील को लो, किसी होर जज को लो, उन्हों राय लेने की लोड़ नहीं, पर तेरी फाइल जरूर दी है, यह बेहस न जा पी जे किसी आने राज। गुरु कहने लगे नानक
ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।

सगल मनोरथ पूर पारदन पाया उतरे सर्व सूर दुख रोग संतापी उतरे सुनी सची बाण संत सजन भय सरसे पूरे गुते जा सुनते पुनीत कहते पवित्र सदगुरु रहा भरपूर है बिनवंत जाने गुरु चरण लागे वाज्य महापुर सुनते पुनीत कहते पवित्र सदगुरु रहा भरपूर है बिनवंत जाने गुरु चरण

तेरी दातार। बंद खलासी पाने हुए होर आख न सकै कोई, जे को खाए को अखण पाए, ओ जाने जे तिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आख है इसे पे कई कई। जिसनों बख्शे शब्दशाला, नानक पातशाही पातशाह, अमल गुण अमल व्यापार, अमल व्यापारी अमल भंडार, अमल लाभ है अमल ल जाए, अमल पाई अमल ना समाए, अमल धर्म अमल दीवान, अमल तौल मल प्रवान, अमल बख्शीस अमल निशान, अमल कर्म अमल प्रमाण, अमूल अमूल आख्या न जाए, आख आख रहे लिबलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बख्याण।

रंग प्रधाने आएंगे, सर्वत्र जापे आएंगे, सर्वत्र सापे आएंगे, सर्वत्र पान आएंगे, सर्वत्र मान आए, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीमा के परमंग भीमा है, के अगलो लाम है, के साहब कलाम है, के हुसन अल भजू है, तमाम रजू है, हमेशा सलाम है, सलीक तमदाम है, गरीबल सकाशता गरीबल परसदा है, बुलंदल मकान है, जमीन अल जमान है, तमीजल तमाम है, रजू अल दान है, हरीफल रीमा रजा के यकीन है, अनेकल तरंगा बेद है, पांग है, आज ही जल निवाज है, गरीबल खराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त भगूत है, पर भक्त प्रवाह है, सुजोत सुधा है, सदैव स्वरूप है, बेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, निर्वाद स्वरूप है, गाद है, अनूप है, अंगाद रूप है, नाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिवादे गंजय गाधे सुवंग सर्वभाग्य सुसर्वानरागे त्रिपग स्वरूप है, सजय सूत है, किणरक प्रणास है, प्रत्यूल प्रवास है, निरोक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभक्त स्वरूप है, प्रजोक्त अनूप है, निरोक्त सदा है, विभक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजोक्त अनूप है, चाचरी छंद भंग है, नंग है, बेखा लेख है, परम कर्म नाद जुगाद है, जय भय भूत दूत है, ना शब्द असंत बंध है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, नचंत सुनंत लेख देख है, लेख बेख टाय गाय, असंभ है, गम है, नीला नाद है, नित सुनित जात जाद है, चरपट छंद दग प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं तारमं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत दा प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे भंगंग भूते ब्रह्मादिं ब्रह्माथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न दाते न माता न जाते न पाते निरसाकं श्रीकं मित्रं हिकं सदैवं प्रवाहे जय जय भगवती शंद दग प्रसाद के जा हरजूर है के हाजर हजूर है मेसल सलाम है समाजल कलाम है के साहब दिमाग है के उसल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के सर्वं करीम है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज ग्रहंद है गरीमल कमाल है के उसल जमाल है गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल गन है राज सर्व कान है गलंकं प्रणास है समाज तुल निवास है गंजल गनीम है रजाय करीम है समाज तुल जवाह है के साहब गिरा है के नरकं प्रणास है बैस तुल निवास है के सर्वल गवान है मेह तुल रवान है तमामल तमीज है समाज तुल अजीज है पारंग परमेश है समाज तलाधीश है दीसल लेख है मीसल भेख है जमीन उल जमा है मी कल महा है ग्रीमल कमाल है जरो जमाल है के अचलंग प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मैं तो भूत है कि मैं तो बसा है कि आदम प्रवाह है कि अचलंग नंग है कि मैं तो भंग है आज ही जम निवाज है कि नीमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है पर भक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है।

माहे क्रीमल कमाल है गजरो जमाल है गजलंग मृगाश है कि मैं तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मैं तो बभूत है कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रवाह है कि अजलंग रंग है कि मैं तो पंग है मद पार शांत तब प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मधाम हर भरिया गंज हर नर पर पांज गण गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड पर नर अमंड हन पवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जी अंग आसन पंग उपमा पार गात मेदार जल थल अमंड दिस विश पांड जल थल महंत दिस विश बेअंत अन पवनाश द्रत दर दुरास अजन बाह कसदा ओंकार याद कथनी अनाद कलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम ज चरण नाम अंश जगात जिजन बात अन चंज गात अंतरंज बात अंडुट भंडार अंडुट पार अजीठ धर्म अदीठ कर्म अन प्रण अनंत दम हंत हर बोल मना शांत तक प्रसाद करुणा लिया है हर कालिया है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड से है कलखंड से है वर्ते पर है करुणा कर है अजप जप है थप थप है कृता कृता मृत अमृत है मृत अमृत है करुण कृत है कृता कृता तरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृता मृत अमृत है अजबा कृत है मृत अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंपुर है करुणालय है निर्पनायक है सर्वपायक है पव पंजन है अर गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जस है पुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह धाम सिंह शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलयकर्ता नमो शाद रूपे नमो इंद्रेन्द्र नादिंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशास नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री चंद अजय अलय पै वै पू अजू नाश काश गंज पांच लख बख काल दयाल लेख भीख नाम काम का टा नाथी परमाथी न ना।

साच कहूं सुन ले हो सब जन प्रेम की हो तनि प्रभायो काहू ले पाहन पोई धरे सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख हर वाची दिशा महे काहू पिछा घोषी सुनवायो को बदान को

को अमृतान को पूजन थायो गौर करया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पातशाही दसवीं कवि वाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए जद की इच्छा दब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतवारा हमरे दोष्ट सब तुम काबहु आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परिवार सेवक सिख सब करतार मोह रक्षा निज कर दे करे आए सब बैरन कौ आज संघरे आए पूर्ण होए हमारी आसा दूर भजन की रहे ब्यासा तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो अवर जाऊं सतम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चन चन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे है मरण काल का त्रास निवरे है जो सदा हमारे बच्चा सरिया तो जू करे और अच्छा।

देव की पीर पछाना है, गड़गड़ के बड़ बड़ की जाना है। जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा दर्द तब दी अपारा, जब अकर्ख कर दो कब हूं तुम मैं मिलत दी दर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही तेरा निरालम, जानत भी दिया रियालम।

आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा गले वे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिन का मोह टुटा जिन का शब्द सजा सवारिया कहे नानक आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सुजन पावे बाबा दसो जन दे जिसन और क्या करे बेचारिया एक परम भूले फिर दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जन बन पावे कहे नानक जस दे प्यारे सोई जन पावे आव संत प्यारे हो अगत की करें कहानी करें कहानी अगत गिरी गेत द्वारे पाई है धन मन दान सब साम गुरु का हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्या गुरु केड़ा गावो सची बाणी कहे नानक सुनो संत कथे अगत कहानी ए मन चंचला जदना इंगने न पाया जदना इन पाया किने दुष्ण मन मेरिया हे माया मोहनी जिने इस परम बुलाया माया दा मोहनी तने कीती जन ठगौली पाईया कुर्बान कीता दिसै बिटाओ जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल जदना इंगने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हे कुटुंब तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ दे रह चलै नाही तिस नाल क्यों जित लाई है ऐसा कम मूले न कीजै जदंत पछताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अग मैं गोचरा तेरा अंत न पाया किने तेरा अपना तू जाने।

सिमरत शास्त्र बन बाप विचार दे तत्ता सार न जानी, तत्ता सार न जानी गुरु बाजो, तत्ता सार न जानी ते ही गुणी संसार ब्रह्म सुता सुधरण बयानी। गुर कृपा तिसे जन जागे जन हर मन वसया भूले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत् पाए जिसन वन दिन हर लिव लागे जागत रहन बिहानी। माता के उदर में व्रत बाल करे सो का मनो वसारी है मनो का वसारी है बुढ़दाता जगन में आहार पहुंचावे। उसनु कहे पौ न सके जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक बुढ़दाता सो का मनो वसारी है। जैसी अगन उधर में तैसी बार माया, माया अगन सभी को जही करता खेल रचाया। जहां तिस पाणा ता जमया पर बार पला पाया। लै छुड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया। हे माया जितार विसरै मोह बजे पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिन हल बलागी दिनी विचे माया पाया। हर आप मुलिख है मुल न पाया जाई, मुल न पाया जाए किसे बिटो रहे लोग बिल लाई। ऐसा सतगुर जी मिलाए तिसन सर सौ पिया बिचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बसे मन आई। हर आप मुलक है मां भागत न के नानका जिन हर बल पाए। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर दे रास जानी। हर हर न जप जियो लाख टिल दिहाड़ी। एह धन तिना मिलिया जिन हर पे बाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा। हे रसना तू अन रस रात रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए औरत कित जर हर रस बल न पाए। हर रस पाए बल पिए हर रस बहुना दृष्णा लग आए। ए हर रस गर्मी पाई है सतगुर मिले जस आए। कह नानक हो रन रसा बिसरे जार वसै मन आए। हे श्री राम मेरिया हर तुम जोत रखी दादू जग में आया। हर जोत रखी दुध बच दादू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जन जियो पाए जगत दिखाया।

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विचार प्रत सुन कर प्रगट दास सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्ति।

0: पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
1: लक्ष्म किया चंग्याइया लख पुन्ना प्रवाण लख तब प्रतीता सह जोग बेबान लख सुन चंद राम रण में छुटे पुराण लख सुख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।
0: जिन करते करना किया लिखिया उन जान नानक मत की नित्या कर्म सचा नी।

बहुत उपाया तुझे भाया। बस्तर में पैरे एनस कैरे मोन बगूता क्यों जागे गुरगुन सूता। पागो पिताण अपना किया कमाना अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्खन दे पत दुआई विणना में किसाई न पाई रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी।

मूर्ख पंडित हिकमत हुजित संजय करे प्यार कर्मी कर्म करे गवावे मंगाए मुख द्वार जति सारु।

सब सुसवालियो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक कर देखिया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द सूदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक

मन सड़ फिटे तन फिटे फेट करी मन दुखे चुली परी कहो नानक सच से आइए सुचोवे ता सच पाई पौड़ी चिते।

अर्घ्य फिटिए मोतु का फिटके पाए फिटका मूर्खा किए अंदरों झूठे पैजबार दुनिया अंदर फैल अट कट तीस देना वह उतरे नहीं मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार दिन ने हो लगा रमती थी देखनी विचार रंग सरंग रुवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सतनाए दरवाजे पर खर्च मंगा जब है दे तंखाए दीवाने को तल में का हम तुम में दर लले का पीड़ छूटे नान का जीव तेल पौड़िया पे कर

0: صلاتِ حیہ نانو کو منہ پر لکھوائی گئے شوٹ سنائی کو تو لکھوائی نام جبتے پر پڑھائی انک بھی جنر ہوں جا آئے سنگارے ہر کرنا تترالے دھارے انک جون جن میں مر جام نام جے تفاقے تسرام ہو محلہ ملک اپنے کو گئے ہر کو نام کوٹ پاک کو گئے ایسا نام جسے من رنگے نانک بھائی ساتھ کے سنگل جائے مارک کے گنے جائے نکوسا ہر کا نام وہ سنتوسا جتن جے مہا انک بارا ہر کا نام سنگ اجیارا جہاں پانچر کو نہ چانو ہر کا نام کے نال پہچانو جائے مہا پہن تاک لوکان تے ہر کے نام کے تم اوپر شام جہاں ترخا من تجو کر کے نام کا ہر ہر امرت کر کے ابک جنا کی بس نام سمجھے نہ کہ مند سلام ہر کا نام داس کی اوٹ ہر کے نام درجن کوٹ ہر جس کر سنت جن رات ہر ہر آخر سات مات ہر جن کے ہر رام نام پا جن جن کی نو دان منتر نام رسرم جن کے بت وے کہ ہر کا نام جن کو مکت جگتو ہر کا نام جن کو ترگت بھگتو ہر کا نام جن کا روپ رنگ ہر نام جب تک پرنا بنگ ہر کا نام جن کی ہڑی آئی ہر کے نام جن سوگا پائی ہر کا نام جن کو پو جو ہر نام جب تک نام جو جن آتا ہر نام کی سیوا نام پوجے ہر ہر دیوا ہر ہر جن کے مال خزینہ ہر سر جن کو افرینہ ہر ہر جن کی اوٹستانی ہر سر صاف جن اب نہ جانی اوت پوت جن ہر رس راتے سن سماد نام رس ماتے آٹھ پیر جن ہر ہر جسے ہر کا پگت پرگٹ نہیں چھپے ہر کی پگت مکت بو کرے نانک جن سنگ کے تے کرے پار جات ایو ہر کو نام کام تین ہر ہر گنگام سب کے اتم ہر کی کتھا نام سن کے درد دکھ لتا نام کی مہما سنت رس ہے سنت پرتاپ درد سنت ہے سنت کا سنگت بھاگی پائیے سنت کی سیوا نام کی ہے نام تلک سبن ہوئے نام جو مکھ نام بھاگے جن کو سلوک بہ سا کر بہ سمرتی کے کھی سب کنول پوج سنائی ہر ہر نانک نام امول اشٹ پدی جاپ تاپ کے انتر دھیان خط شاستر سمرت بخیان جوگ بھی آگ کرم کرم کریا سگو پیا جن مدے کریا انک پرکار کیے گو جتنا پن دان ہومے مہرتنا شریر کٹائے ہومے کر راتے برت نم کرے گو پاتی نہیں تو لو رام نام بھی چار نان گرمکھ نام جتی ایک بار نو کھنڈ کیرتنی پھر چر جیوے مہا اداس کی شرکی دے اگن میں ہومن پران کن کا سو حیدر سندان یولی کن کرے وہ سنجان مارگ سنجی مارگ سادن نمک نمک را سکار سیر کتارے توپی ہو میں نام جاگے ہر کے نام سامنے پیر کا سنا ہے نان گرمکھ نام جت کر پاہے من کامنا پیر سے دے چھٹے گرم کا من نہ من سے ہوتا ہے سوچ کر دن سو آراد من کی محنت تن سے جا اس سے ہی تو وہ سادھنا کرے من سے سب ہوں نہ بھی کہتا رہے جل تو وے بو دے امیت سد کہاں ہو کر چی پیت من ہر کے نام کی مہما اونچے نانک نام ادھرے پت تو بہت نیچ بہت سے انکوں کا سو پیا پے انگیت نگا سر سنگا کرا پے پے سر انگیت کے نیو ویڈے کو تو کام کر کے بھی سجے سوٹ جنا ہی او پیال موہے پیا پے مایا جال اگر کرتوت سدلی جم دانے گوگن پجن دین چلی جانے ہر کا نام جب دکھ جائے نام بولے سائے سبھائے چار بازار سے یہ کو مانگ گئے سات جنا کی سیوا لاگے جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام دے سرکارے جے کو اپنی سوگا لو رہے سات سنگ اے ہومن شو رہے یہ کو جن مندر ڈرے سات جنا کی سنی کرے جس جن کو بردا سے آسا نام جنا کے بل بل جاتا ہے سجل روی پرک میں پرک پر دام سات سنگ جاتا نتے اسمان آس کو جے جانے نیچا دو گنے سکتے بیچا یا کا من ہوئے سگل کے رینا ہر ہر نام پن کر کر چینا من اپن پہ برا مٹانا پیسے سگل سرشت ساجنا کیونکہ دل کے انسان مرشتے تانا نکتا پون نہیں لے پا میرے تن کو تن تیرو نار نتاوے کونو تیرا تھا نیمانے کو پر تیرو ماں سلکتا کو دی گوزان کا دکرا بلحات کو آمی سلکتا کے انتر جانی اپنی دستن جانو آتے آپن سنیا کو پروراتے کمری اس سے تم تو ہوئے نانک ابن جان سکوئے سرو ترم میں شریش ترم ہر کو نام جپ نم کرم سرو کے ہمیں تم کریا ساسن گرمت ملہریا سگل ادم میں ادم پلا ہر کا نام جپو جی سدا سگل مانی میں امرت بانی ہر کو جس سونے رتن بخانی سگل تھان تے او تم تھان نانک جائے کٹ وسے ہر نام سلوک निर्गुण यारे यानिया सुपर सुरा समाल जिनकी है फिर तीसरा को नानकी जी नाल अष्टपदी रवैया के गुण शेष प्राणी कदन मेल से कम निष्ठानी जिनको साग सिगार सिगारे अगर बदन में जिन्हें अवारिया बार निवस्था तुझे प्यारे दूध पर योगन पोषण सुख सुर दिव्य सिया ऊपर साग सैन मुख अपियाओ वैठ को दैन इस निर्गुण गुण को समझ लीजिए बख्श ले उसे नाम किसी जय जय प्रसाद तारु ऊपर सुख बदे सुख प्राथमिक बनता समय से जय प्रसाद की जय शीतल जला सुखदायी पवन पावक अमोला जय प्रसाद हो गए सब रसा सरुष नवे संसार प्रसाद दीने हस्त पाव कर्ण नित रचना किसे त्याग अवर संरचना ऐसे दोख नूड़ अन्न पे नानक कढ़ लियो प्रभा पे आद अंत जोड़ा कन्हा किसन कीर्तन करे गुवा जाति सेवा न मिल पाले तासे मूरा मन लावे देखा कर पे सुधा दूरे का को न जान दूरे जाके टहल पावे दर्गे मान किसे विसारे मुग्ध जान सदा सदा है भूल हार नानक रखन हार अपार रत्न त्याग कौली संग्रचे साच शोध झूठ संगमचे जो सजना सुबह से कर्म ने जो हो सब दूर पराने छोड़ हो जाए थे संग संग साहित पर हरे चंदन ले पर सारे सोए कर दबे शीतल रंग हो अंधकूप में पसे विकरा नाम काट ले हो प्रभु दयाल कुटूत पशु की मान सुजात लोक विचारा कर धनवाद बाते कम प्रमल माया शपिशना के सुरेश पाया हुआ हर ज्ञान से निशना मंत्र व्यापे लोक हम मंत्र गंदा तुम स्वाद हर पात्र कैसे तरी था जाते अंतर बसे प्रभु आप नाम से जन सहित मान सो अंधा कैसे गौर जपा गए कर जो लिहो उन भावे कहा जात बुझे डोरा निष्क्रिय तो समझे डोरा कहा विष्णु पद गावे गुंगे जतन करे टोपी सुन पिंगल पल पृथ पर पवन नहीं हो तू उस गगन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुम मेरी कृपा करे संग साई सो अभिनय चीत जो वह राय तम सुप्रीत बलुआ के ग्रह तीसर गति अंते माया रंग सही दृढ़ कर्माने मन पर चीत कालना हरे मुड़े शीत बैर विरोध काम क्रोध मोह चूठ प्रकार महान लोक त्रो इहो जुक विहने के जन्म मन करा चले अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख मेरे हुए ना जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचे भगवान सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी तुम तो हो स्वाध्याकारी तुमरी करते तुम ही जानी नानक दास सदा करवानी चलो देन हार सब छोड़ कह लगे हम सुनाए नानक उन्हें सीधे बिना वे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कारण ले कोट गवावे एक पीना दे दसी है ले तमुड़ा कहो कहा करें जिस ठाकुर सोना ही चारा ताके तीजे सद नमस्कारा जाके मंगला जापन मीठा सर्व तो कहो मन बूठा जीजन अपना हुक्म बनाया सर्व तो ग्रहण धन पाया अगर सौ अपनी वे रास खासी प्राते नंद उलास अपनी अमान कस बहुत चले अगे नहीं मनोज करे अपनी पति काफी खो गए कब बाकर हो गए जिसकी वस्तु आगे रखे प्रति अगे माने माते उससे चौगुण करे निहाल नानक सब सुधा दयाल अंक पात माया के हेत सर पर हो गए जन अनेत दिखी साया सन मनावे ओ बिन से मन स्थावे जो जिस दिन से सो चन हार लट रहे थे अन्न अमार बताओ सुनियो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज यौवन कलमा मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या आकाश के अर्थ वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीखाता मिथ्या द्रोह मोहमान मिथ्या सुपटकट गमान आश्चर्य भगत साक्षी सारे नाम जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या कर्म पर निंदा करे मिथ्या हस्त कर्म को हृदय मिथ्या नेत्र देख भजते रहे रूपा मिथ्या रचना को ही अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार के भावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या वास ले सकारा बिन बुझे मिथ्या सफाई सफल दे नानक हर हर नाम ले व्यक्ति कालपत की आर जा सात बिना तो होवे सुचा दिता ना मिला पर अन्य मुखावे ताके जरुआन दिन सिमरे नंदन नयन दिता विहाय निक बना जो खेती जाए गोविंद भजन बिनो दिते सब काम जिन कृष्ण के न्यास राम तन तन से जन जय सत वसे हर नाम नानकता के बल बल जाऊ रहत अवर कुछ अवर कमाव कर मन नहीं प्रीत मुखो घट राखते जन हर कोई प्रवीण भावत एक न कहूं दिन अगर अवदेश आवना करे आवत जावे जन्मे मरे जिसके अंदर वैसे निरंकार किसी सिर से संसार जो तुम पाने चंतर जाता नाम को निरंतर प्रदाता करो जिनके विभाजन सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप अब कथन मेरा किसे दूर जनात किसे विजात मेरा अपाव श्यंत सर ग्रह सबके जाने आत्म की रह जिस पावे जिस लय लाल लाए कौन तुरंत रिहा समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमक निक जा स्नान करी सलो काम करो जाए लो मोह दिस जाए अहमेव नान कर शरण सी कर प्रसाद कर दे अश्वरी जय प्रसाद सती अमृत खाए टीका कर कुहक मनवाए जय प्रसाद सुगंध तलावे तिसे तिल पन पावे जय प्रसाद दस सुख मंदिर तिसे जय सुगमन अमर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना सहज सुंदर की रचना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा के त्यागन योग जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंधावे किसे त्याग अवल भावे जय प्रसाद सुख से ही जय मना सहसा का जस का विजय जय प्रसाद सबको मन मुक्ता को जस रक्ष बखाने जय प्रसाद तेरे रहता था मन सदा के पार बहन प्रभु जी जप से दरगे मान पावे नानक पति की कर जावे जय प्रसाद और कंचन देही विबला सनाम स्नेह जय प्रसाद लारा के मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद सगल सीध ठाके मनसा ने प्रथा कर सो ठाके जय प्रसाद कौन गुरुचे मनसा सा सिमर पुरुचे जय प्रसाद पाई बलब दे नानक तकी पर करे जय प्रसाद आपूख पहरी जय मन किसे सिमरत क्यों आज की जय जय प्रसाद अशुभ हस्त सुवारी मन किस को कहो न बिसारी जय प्रसाद बाग निरतना रास करो इवर अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठे साथी से त्याई किसे त्याय जो एक अलग है यह उह नानक तेरी रखे जय प्रसाद करे पुन गो दान मना सह कहते जय प्रसाद तू चार बिहारी पितर को साथ साथ तारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सुदाम जय प्रसाद तेरी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करना जय प्रसाद के विस्मा जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सजी बसना जय प्रसाद सच करे चले जय प्रसाद पूर्ण पले जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रगति आगे अवर कतलागो गुरु प्रसाद नानक बन जागो जय प्रसाद तू पर गुरु संसार किस पर को मूल है मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू का कुर्जा जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे किसे जन्म सुहा जय प्रसाद तू पावे साजे रे मन मेरे तू का सुरा जय प्रसाद तब की गत होए नानक जाप जपे जप होए आप जपाए जपे सुनाओ आप गवाए सो हर जन जाओ प्रभु कृपा ते हो प्रगाढ़ प्रभु दया ते कमलो विकास प्रभु सोपर सन बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व नाम प्रभु तेरी ने आपो किसने किन हो लिया जित ये तो लाभो जित लगे हर नाथ नन किन के कृष्ण हासलोक अगम अगाध आर ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिन ममता साध जना की अचर्य कथा अष्टपदी साध कै संग वो पूजन हो, साध संग मन शरीफ हो, साध के संग वे लिटे अमान, साध के संग वे हरे तेसो ज्ञान, साध के संग वे बुझे पर मेरा, साध संग सब होकर मेरा, साध के संग वे पाए नाम रतन, साध के संग वे खूब पर जतन, साध की महिमा वर्ण कौन पलानी, नाम के साध की शोभा पर महेश माणी, साध के संग ओगो चिर मिले, साध के संग सुरा पर फुले, साध के संग आवे पर पंचा, साध संग अमृत पर पंचा, साध संग हो सबकी रेन, साध के संग मनोहर गए, साध के संग न कठोर पावे, साध के संग ऐसे सुन पावे, साध के संग माया के तिन, साध संग नाम से प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सनी, साधु के समापनी, साध संग की शिष्य लाए, साध के संग न विद्या पाए, साध के संग नहीं को बंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नहीं होता, साध के संग से स्वभाव आप जाने सब लड़ाई ला, सब प्रभु हमारे साध के संग न कभी हंता गए, साध के संग सास पाए, साध संग दर्शन को चल रहा है, साधु के संग अग्र सहे, साध के संग दशरथ ने ऊंचे, साधु के संग मैल को ऊंचे, साध के संग दरिड़े सर तन, साध के संग के पाल जन, साध के संग पाए नाम नाम सब के प्रदान, साध के संग सब कुल हारे, साध संग साधे नीच को तमन, सारे साधु के संग सोतन पावे, जिसम पे सब को सारे साध संग परम राय करे सेवा, साध के संग सो बस कर देवा, साधु के संग पाप लाए, साध संगमित किंदाए, साध के संग सर्व संग नाम नाम के, साध के संग सफल जन्म, साध के संग लंकिस्ताल दर्शन पे ठोस निहार, साध के संग कलु कतारे, साध के संग नर पर हरे, साध के संग यहाँ वहाँ से हिला, साध संग बिजते सर मिला, जो ईश्वर से सुल पावे, साध के संग न बिछा जावे, पार ब्रह्म साध रसे नानी उदरे, साध सुन रसे, साध के संग सुनहा लाओ, साध संग हर की गुण गाओ, साध के संग नाम मंत्र विषय, साध संग सर पर नेत्र, साध के संग ये लगे पत्नी था, साधु के संग का जीता, साध संग के अभ्यकारी, साध संग रोगत गई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पिते संयोग, साध की महिमा भी रंग जाने, जिता सुने जिता बचारे, साध की रूपा से गुंते दूर, साध की रूपा ने प्रभु, साध की शोभा का निंत, साध की शोभा सदा भी अंत, साध की शोभा ऊंची ऊंची, साध की शोभा नीचे नीची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रत्येक न पाई श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अब न देखे एक दम खोए, नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए ऐश्वरी, ब्रह्म ज्ञानी सदा न ले जैसे जन्म समय ले, ब्रह्म ज्ञानी सदा न दो जैसे सुर सौ के सो, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राजरंग को लगे सुल्तवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे एक जो जागो खुद चुनले, ब्रह्म ज्ञानी का एक नाव नाम जो पाओ का सहित भाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैन लगे जरा, ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रकाश जैसे तरु प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र चतुर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच्च ऊंचा मन अपना सत्य नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जिन पाए नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी शरीर के दीना आत्म रहस्य ब्रह्म के नीचीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ, ब्रह्म ज्ञानी पे कस भरण पे आ, ब्रह्म ज्ञानी सदा संघर्षी, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य मंत्रवासी, ब्रह्म ज्ञानी मंडल से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी पीने में युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बना, ब्रह्म ज्ञानी के गिरिदीश महा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही चंदा, ब्रह्म ज्ञानी लताओं के बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हो सफला, ब्रह्म ज्ञानी सुख सुखला, ब्रह्म ज्ञानी संसार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बस प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रभार, ब्रह्म ज्ञानी स्वास्थ्य जागते, ब्रह्म ज्ञानी अहमत्याग, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सैन वास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बन जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजिए महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी को सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने पेशन ज्ञानी को सुना दे ब्रह्मज्ञानी का कथा ना जाए अगर ब्रह्मज्ञानी सब कथा कर ब्रह्मज्ञानी की नित्य कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंतर पारे नानक ब्रह्मज्ञानी को सुना नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सब जीव निमर्ता ब्रह्मज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख बताता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी का सर्व आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी ही सर्व का धन।
1: जो अंतर्नाम सर मैं के भगवान निमुख निमुख खातर नमस्कार है धान को फर्श सजल ने सारे ऐश्वरी मिथ्या नाही रचना फर्श मन में चित नरंजन दर्स प्रक्रिया रूप न देखे नेत्र साध विचार संसंग हेत कर ना सुने की जिंदा सके जाने आपको मना गुरु प्रसाद विद्या पढ़ा रहे मन की भाषण मनते करे इंद्री जित पांच लोक से रायत नान कोच मिले को ऐसा फर्श
0: वैष्णो सो जिसु को प्रसन्न विष्णु की माया आते हुए तीन कर्म कर्त हो गए न करण किस वैष्णु का निर्मल धर्म कहो फल की इच्छा नहीं बात है केवल भक्त कीर्तन संग्रह से मंथन अंतर सिंह गोपाल स्वरूप हो कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जी पावे नानक रूप वैष्णो परमत पावे भगवती भगवान पौत का रंग संग मंत्र से सगल हो गए भगवंत की टहल करे प्रीत मंथन अत्य विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय विचारे नाम सत भगवती भगवान पा गये सोन दत्त जो मन प्रभु सो गये राम नाम सारे हर की रसा हृदय विचारे सुर से दो ना गये वेद प्राण स्मृत बुद्ध नील सुख न जाने अश्रुचवर्ण को देश देश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सब को ज्ञान चौवर्ण में जत को नाम जोड़ जत किसकी जत हो रोग का प्रणाम प्रचान रूप गुरु नाम कहू जिसके पे ना पाइए सन नाम किस मिले जिस लिखा कुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास किसका नाम सतराम दास आत्मराम किस मिलिया दास संतन पैदल पाया सदा देखे इसका जान से उदास कर गए प्रवान अपने दास को अस्थिरता करे किस दास को सब सोची तब सब संग आत्मदास ऐसी जीत नाम कराम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हटावे जीवन मुक्त हो कहावे पैसा हर्ष पैसा हंगाना से नहीं सो पैसा स्वर्ण पैसी सुमाती पैसा अमृत पैसी दिखाती पैसा माम पैसा उमाम पैसा रंग पैसा कल्याण जो बताए सारी जीव तो नाम को पुरख कहिए जीवन मुक्त हो पार दिन के सिले खाओ जीत कराते पैसा संगाओ आपे तंत्रा में रहो तो पावे सही सुनो फिर आपके अंतरंग लसे न जाए पार दिन के रंग जैसी मत देगा सतर्गा से पार ब्रह्म का तावना सदा सदा ध्यान सुमित सुमित नाम निहाल श्लोक स्थित करे अनेक जन्म फल पारा बार नाम कृष्णा प्रवृत्ति बहुत प्रकाश को पुजारी को आचार बिहारी कई को ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਂ ਸਾਥ ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਤਾਂ ਸਿਮਤਾ ਸਾਥ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਸਮੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚੰਦੀਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਰਨ ਕੀ ਗਏ ਕਈ ਕੋਟ ਜਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਸੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਿੰਘਾ ਸੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾ ਪਲੇਟ ਤਿਆ ਸਕੂਲ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਚ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸਰਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਮਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਂਦੇ ਸਤ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਨੇ ਚਿੰਤ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗੇ ਕਈ ਕੋਟ ਸਭ ਕੁੱਖ ਜਨ ਪਏ ਆਤਮੇ ਤਾਂ ਦਮ ਲਹਨ ਪਏ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁੱਤਿਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਤਦੋ ਨਾਲ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਨ ਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਾ ਜਨ ਰਦਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਕੋ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖੰਡ ਕਰ ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਅਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਕੋਟ ਕੋ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਾਸਾ ਜੀ ਕੇ ਸੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਨੇ ਵੋ ਪਾਲ ਸਰਚੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਸ ਅਗਾ ਅੰਤ ਨੇ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਜੀ ਪੀ ਗਏ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਰਾਵੇ ਆਤਮ ਰਾਜੇ ਪੈ ਸਮਾ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਲ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਮ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਸਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਖ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਬਲਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲ ਤਲ ਮਈ ਕੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਨੀ ਦੋਈ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਥਾਪ ਥਾਪਣਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰਾ ਬਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰ ਅਸਰ ਰਹਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਕੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕਾ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਾਈ ਨਾਲ ਸਮੇ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭੇ ਭਾਵੇ ਮਾਨ ਕੁਖਤ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਖ ਪ੍ਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਦਿਨ ਸਾਲ ਚਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪਾਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪ ਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਜੋ ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਆ ਕਾਪ ਤੋਂ ਅਮੀ ਕਿਲੇ ਨੁਕਸੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਗਏ ਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਬ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੇ ਚਾਹੇ ਆਵੇ ਜੋ ਕਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨਵਾਜ ਕਰਿਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਆਵੇ ਕਿਸ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਗੰਗਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾ ਤਿਸੀ ਰਾਜ ਕਟਕੜ ਪਿੰਡ ਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਤ ਆਪ ਲਾਈ ਨਾਮ ਹੀ ਜੋ ਦੇਖ ਬਿੜਾਈ ਇਸ ਕਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਕਰਨ ਕਰਾਵੋ ਸਭ ਸੁਣਾ ਸਾਧਿਆਕਾਰੀ ਬੱਤਰ ਜੀਓ ਜੋ ਤੇ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਸੁਚੀ ਹੈ ਕਭੂ ਉਸ ਨੀਚੇ ਲੱਸੇ ਕਮੀ ਸੋਈ ਭਾਰਤ ਲੱਸੇ ਕਮੂ ਨੀਚੇ ਬਿਹਾਰ ਕਭੂ ਜੋ ਕਾਸੇ ਹਾਲ ਕਬੂ ਅਪ ਕੀਰਤਨੇ ਆਵੇ ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਦਹਾਵੇ ਜੁੰਡ ਭਲਾ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੇ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਵਕਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਹਨ ਤਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤੱਤ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਮੁਖਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪਤੰਗ ਹੋ ਜੀਆ ਅਰਕ ਜੋਨ ਤਨੇ ਪੰਨੀਆ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਜੀਵ ਪਤੰਗ ਲਿਖਾਵੇ ਜੂਤ ਪਾਵੇ ਜੀਵਨ ਚਾਵੇ ਜੋ ਸੀ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਗਨ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਰ ਕੰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਹੁ ਨਾਲ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਗਾਟ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਪਾਤਨ ਦੇ ਸੰਗ ਜੋ ਜਲ ਦੇ ਜਲ ਆਏ ਬਤਾਨਾ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਸੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਗਨ ਆਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚਰਵਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸ਼ਕੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਗਰਭ ਤਲੇ ਅਸ਼ਟਵਦੀ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਗਰਤਾਤੀ ਹੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਨਮਾ ਸੋ ਸੋ ਹੋ ਸਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜਾਨ ਆਪ ਸੋ ਕਰਮੰਦ ਕਹਾਵੇ ਜਨਮ ਰੋਗ ਜੋਨ ਪਰਮਾਰੇ ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ तन बनता हो एक दरभावे चरण सुमान के संग निजाने को लश्कर मान को कर करियाल कल्पी प्रता तो हो सत्य अपने मलमंत्र में हो जाए उस मंत्र से न लगे आप अहंकारी चरण कुवारी गुरते शाह जाता मिटे मान को जन मान को दर्गे प्रमाण कोट कर्म करे हम तारे कर्म पाते सगले जो ठारे हंस तपस्या करे अहंकार नरक सुरु सिर्फ अवतार अनुज्ञन कर आत्मनिंदर दर्गे को कैसे गवे आप चूजो करा कहा गये किसे पलाई मिठी आवे कर किरी या कर हो कर्म अन पिता की नि मिल सोए जब लग जाने नीचे कुछ होए तब इसको सुख नहीं कोए जब अने में कुछ करता तब लगकर जोन में फिरता जब धारी की गई नीत तब लगने चलना ही की जब लग में मगर संग मारे तब लग तार में आए पिदाए प्रभु कृपा से बंदे टूटे गुरु पेशा नाम को सुनते सच तेला तो कोटा वे कृष्ण आवे माया पाशे पावे हम को सबे तब संवरे दिनाओ संतोष में तो राधे सुख मनो तो सरकार नाम रंग सर्व सुख बिटा जी किसे प्राप्त है तन क्रम अपिलासा नाम संजाव तन क्रम का निहार इसे हाथ का विचार जैसी दृष्टि दुर्गा फिर आप पास सो गए किसकी नमो सपने रंग सत्य जी सब के संग दूजे देखे करे भेक आपे एक आपे अनेक मरे न जिनसे आपे न जाए नानक सभी रहत माए आप सबदे पे समझे आपको आपने आप तेरे से सबसे आपकी नो आपने विस्तार शक्ति इसको होगा निहार उससे तीन को शांत में एक संकल्प का निहार करें हम अपार मन में आप मन अपने माहे नाम की करने जाए सत्य सत्य सत्य स्वामी गुरु प्रसाद की नींद प्यानी सच सच हर सब की ना तो उसने फिर भी लकी ना तला तला तला तैयू अक्षर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी कट्टर सुनी सर्वे बचानी पवित्र पवित्र पवित्र सुनी तो नाम जपे नाम समन प्रीत श्लोक संत शरण जो जंतर सो जन उदरण हार संत की निंदा नाम का बहुत बहुत अवतार अष्टी संत के दुख में आर जा कट है संत के दुख में ही जनते नहीं छुट है संत के दुख में सुख कर जाए संत के दुख में नर्क में काय संत के दुख में मत है मिली न संत के दुख में सो जाते हैं संत के हत्ते को रखे न कोई संत के दुख में थान दृष्ट हो संत कृपा कृपा जी करे मान के संत संग निंद की करे संत के दुख में नहीं खजे संतन के दुख में काल जन गए संतन के दुख में सर्प जन पाए संत के दुख में तृप्त जन कर्माए संतन के दुख में कृष्णा में जले संत के दुख में सर्पुर चले संत के दुख में तेज चल जाए संत के दुख में नीचे चाहे संत की कथा करनाए नाम संत सावित्री की कथा पाए संत का निंदक महा हतारी संत का निंदक चिंतित न पाए संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजते ही संत का निंदक लिखिया जी संत की निंदक सर्वे संत की निंदक सुरा भी हो संत की निंदा देखने दो कर संत पावे कर प्रिय है लोग संत का सदा प्रदित है संत कथित किसे का निंदित है संत दोषी कौन लागे संत दोषी कौन सत्यागे दुखी महाकाल संत दुखी सराब करे संत दुखी दिन में मरे संति दुखना कृपय करे संत दुखी कौन उठाओ नाम संतारे कल्याण लाए संत दुखी हद रीते टूटे संत दुखी एक दे काल न पूजे संत दुखी जय ध्यान फरमाई है संत दुखी उज्जल पाई है संत दुखी अंत देखो था जो साधना मित्र की लो था संत दुखी की ही जड़ कितना है आपन दिन आप ही खाए संत दुखी तो अब न राकन हार नाम संतारे कल है ओवार संत को दोषी इंद्र लाए ज्यो जल बिहन मछली कर फड़ाए संत को दोषी पुखा मेरा जय ज्यो ताबुक ई धन नहीं तरापे संत को दोषी छुटे पेला ज्यो बुआर तिलकित महे दहेला संत को दोषी संत रहे तो संत को दोषी सत मिथ्या कहे तो कृष्ण मिथ्या तुरी पिया नाम जी के पावे सोई पिया संत को दोषी दुर्ग रूप हो जाए संत दोषी को दर्गे मिले से जाए संत दोषी सदा से चाहिए संत दोषी ना मरे ना जीवाए संत दोषी की तुझे नाशा संत दोषी उठ चले निराशा संत दोषी दृष्टि को जैसा पावे तैसा तू हो दया कितने मेटे कोई नानक जानी सच सोए सब कट जिससे वो कन्हार सदासा तिसको नमस्कार सबकी उसको करो गंगा जिसे चाहो सासुराम सब कुछ बातें सीखा किया जैसा करे तैसा तो किया अपने खिलाफ करने हार दूसर कौन कहे विचार विष्णु कृपा करे साप नाम दे बड़पागी नानक जन थे श्लोक सजो सियाणप सुजनो सिमरो हर हर राय एक आसर मन रखो नानक दूप परम को जाए अष्टपति मान की तेज बिटी सर जान देवन को एक भगवान जी के दिए आए भाई दो मित्र चला गया है मारे राते को आप मान के सुनी आती का हुक्म उसको एक नाम रखन पड़े सिमर सिमर सिमर को सोए नानक भी कहीं लगे तो सुख मन में कर्म इनकार कर मन में रे सब बेहार निर्मल रचना मृत्यु और सुरासे इला काले जी उन्हें पेट ठाकुर का रंग सासंग बिन से सब संग चरण करो मारे गोविंद मिटे पाल जपी हर बिंदे कर हर कर्म सर्व हर कथा हर धन के नन के जो मथा बिड़पागी ते जाने जग माहे सदा से हर के गंगा है राम नाम जो करे विचार चेतन बंद के संसार संतन मुख बोले हर मुख सदा से आ जाने चित्त की एक एक एक बसाने चित्त की एक एक दी जाने नाम संग जिसका मन माने नाम से में तिने नैन अंजाने गुरु प्रसाद आपन अर्थ जो तिसकी जानो तिसका बुझे सा संग हर हर जस कहे तो सर्व रोग ते ओ हर जन रहे तो अंधे ने कीर्तन केवल बख्यान दृष्ट में कोई निर्वाण एक ऊपर जीवन जिस जन की आशा जिसके कटे जन की पासा पादन की जिसमें दूख नाम जिसमें लगे दूख जिसको हर प्रभु मंत्र जावे सो संत हेला नहीं डुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो से उसको किसे डरे जैसा साथ ऐसा लिटाया अपने कार्य में आप समाया सोरे सोरे सोरे सीजिया जो प्रसाद सब सजिया जब देखो तो सब कुछ मिल सो सुख सोई सोई न के जिन्हें न किस मरे अपन चलता सी करे अपन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी श्रेष्ठ आपे आप सभी में आप अनुसो जिसे रखा तो था अवनासी नाई कृतकंड तारणी तार रे ब्रह्मंड अवसर पे प्रताप अब जाता नानक जाप जीन प्रभ जाता सुशोभावंत सदु संसा उदय सम्मंत प्रत्ये से सल उदाहरण प्रत्ये से दुख प्रसाद आपे मिल लय कृपाल गुरु को सज सह निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसने कृपा के बिड़फागे नाम जब कृपावे विश्राम नाम से तुम पुरु को उत्तम कर्मान जो कृपे कृपे रंग इखलास वसे हर संग करने हर पसाने प्रभ का किया कि मिचो दाना जैसा था तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तुस्माय समाय सुखन दान उहू बनाए आप सब दीनो मान हम प्रभ जन एक जन श्लोक सर्व कला पर पूर प्रभ जैसा जन हा जाके समय उदरी है नान किस निहार दे टूटे गन हर कपाल सब जिया आपे पतपाल सगल की चिंता की सनवा है किसे भी सा कोई ना है रे मन मेरे सदा हम जाप अपना से प्रभु आपे आप अपना किया कठिन हो ये सुनो प्राणी लोचे कोई किसे नाही तेरे कट काम गत नाम जप एक नाम रूप बंत हो निमो है कृष्ण जो सलता हो है सन्मानता हो एक तो गर्द है जो सत्य पीछा दिया दर्द है अत सूरज को कहावे प्रति कलावना से तावे जे को हो वह दाकार किसे न हार जाने गवार जिस गुरु प्रसाद के नो रोग नानक सो जन सदा अरोग जो मंदिर को थामे थमण ते गुरु का शब्द मने समण जो पखाण नाग चल करे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे जो अंधकार दीप प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हो सुगास जो महाज्ञान में मार्ग पावे तुम साधु संग ज्योत प्रतावे तन संतर की हो मच पूर नानक की हो लोचा पूर मन मूर काहे बल लाइये गुरु लिखेगा लिखा पाइये दुख सुख तो देवन हार अगर त्याग तू किसे जिताए जो कुछ करे कोई सुमान को लगा करे जान कौन बचाई कर संग लप रिहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नाम स्पर्श की का जाहे जिस बसर को लैन तू आया राम नाम संत प्रगत आया तज अम्मा ले मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाग थे संते संग जाल अगर त्याग कह जंजाल तन तन कह सुल कोई मुख उजल हजर के कोई हो व्यापार रोज ला व्यापार नागता सब बलिहारे चरण साधते पियो अर्थ साध को अपने जियो साध कितूर करो स्नान साधु पर जाइए करवान साध से बबड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गये अनुदिन पे साधु रखे हर गुण गाय अंतर चाहे ओट गही संते दर आया सर्व सुख नमस्ते पाया मित्र को जीवन अनुहार कुके को देश का आधार सपन धान जाति दृष्टि माहे प्रभु लेखे काले न पाए सबको तीसरा तने जो कुछ में दूसर हो न हो जब जन सदा स्वागत रहनी सबके करनी हर कृपा जिसको नाम दिया नानु से जन किया जाके मन कुछ की प्रतीत किचन आवे हकुर चीत भगत भगत सुनिए पहले जाके हृदय एक होए सच करनी सच्चा की रहत सच हृदय सचमुच है तो साची दृढ़ साचा का सच्चा पे साचा पसार और ब्रह्म जिन सत्य जाता नानक सोजन सच मत

स्वलोक रूप न देखना रंग खींचे त्रैगुण पेपर पिन से भी जाए नानका सोभे सो प्रसन्न अष्टप्रिय गुनासी पर मन में राख मन की कुंती त्याग किसके करने के सदन अंतरे को सोई आपे बिना आपे दाना अंगा गिर ही सजाना पाद धन परमेश्वर को बिंद के तन धान जल भंद सात्र की चनी पाओ नानका मन एवं अनराओ मनसा पूर्ण करना योग जो करता है उसे ही हो गुरु हरण कर लिया कहने पर सो किसका मन करना जाने हो अनुरूप मन कर जाके सर्व को सुनिया करता के राज में राज योग में योगी का समय सुरे कृष्ण भोगी चाहे चाहे सबसे सुख पाया नानक सुख का अपने अंत में पाया जाकी लीला चिंतना है सगल ले भारे बगा है पिता के जन्म के जाने पूत सगल ही अपने पूत मत ज्ञान से अंजने चंदा स्नान से आगे से केहो गुण में जाको प्रमाए जन्म स्व आगे जाए ऊंचने किसका स्थान जैसा जनावे कैसा मान खान नाना रूप न मैं जाके रंग न पे क्रेक रंग न मैं विसार पर वर्मा की कंकार न सब से मारे तुझे अपूर्ण सब खाए न मैं मृत्यु कम सुनाई अपनी किन काटे पाई सब काटे तिरके सब से खाए जब तक जी बैनान का नाव नाम के तारे सगले जन कही नाम के तारे खंड मंडल नाम कितारे सिमृत वेद प्राण नाम कितारे सुमन ज्ञान ध्यान नाम कितारे अस्पताल नाम कितारे सुन आकार नाम कितारे प्रिय सपन नाम के संग उदरे सुन सरगल कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे कद में सोजन रखता है रूप सत जाता सत स्थान पुरुष सत के प्रधान कुछ सर से जाती बानी सतपुर समानी सतकर्मी जाती रचना सत मूल सत सत उत्पत सत्कर्मी निर्मल निर्मली जिसे जाए किसी सत फली सतनाम सत का सुखदाई विश्वास सत नानी गुप्तचाई सत वचन साधु उपदेश सत से जन जाते हृदय प्रवेश सतनित बुझे जब कोई नाम जब काफी जब हुए आप सच के हम साथ अपने जाने अपनी मित खाते किसी शिक्षक करने हार अवलंबित कर विचार करते की पतना जाने किया नाम जो तो पावे सोगर दिया विष्णु ने विष्णु साहित समाध जिंदगी जाते साहित वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे राज जो कटहार जाते संसार जन का से विशोध भागी जन के संग एक देव लागी गुण गोविंद गीत कीर्तन अनुराग रहे गुरु प्रसाद नाम फल कावे श्लोक आद सच जुगाद सच है ते सच नानक सीते सच अष्टपदी चरण सत सत प्रश्न हार पूजा सत सतार दर्शन सत सतन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत उधारी अपे गुणा पे गुणकारी शब्द सत सत्य गलता सुत सत सज सुनता जीतन हर को सत हो नानक सत सत सोए सत्य स्वरूप हृदय जन मान्या कर्ण काम तरमूल पहचाने या फिर हृदय सवाल से पाया सत ज्ञान से मन पटाया पैसे ले तो हो विसाना जिस रूप के समय समाना बस मैं ले बस रिदाई तक उसे न कहने जाई मुझे कुछ न हार में गई कोई नारायण ने मन के एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक जारी ठाकुर के सेवक के मंत्र की तो ठाकुर के सेवक के नियम रीत ठाकुर को सेव के जाने संग सबका सेव के नाम के रंग सेवक को तरपाल महाराज सेवक की राशि निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने मन का पर्दा ठाते अपने सेवक की सब सदा से अपने नाशु से बिड़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेव की अब सरा से ताकि रत्न को न लाखे प्रत्ये सेवक को कोन पूछे प्रत्ये सेव कुल से ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया मन सो सेवक दर्ज जैसे पर बिताया निकी कीरी मैं कल राखे पत्न करे लश्कर कोट राखे जिसका शासन काट पाप ताकर रास्त देखा के मान से जत्न कर दो पाप जिसे काटे वित्त जात मरने रखे अमन कहे सर्मिया का राखा सोए
काहे सोच करे रे प्राणी यत्ना सो प्रबल बिटाणी बार नियम बार बार से जतिए इसी हम देह मंथन प्रतिये नाम रत्न जन भी मुस्ताया से शिकायत अगर नहीं दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुखा नाम के संग नाम राज जनपद तन मंत्र नाम नव सुबाने उठक बैठ सो उत नाम कंगो में जल के सत काम बोले जाके दस रात प्रभापने जन की नी दात करे पंकाश्म के चाहे अपने समय जो हुआ हो गुस्सो जाने प्रभु अपने का हुक्म बचाने किसकी महिमा कौन बखाने किसका गुनका एक न जानो आठ पहर प्रभसे हजूरे कई मन से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओत ले मंथन अपना तुम जान रहे जिन जन अपना प्रभु बचाता सो जाने संत तो का जाता किसकी शरण सरसित पावे किसके घर से सब पाप मिटावे अभिज्ञान से निजाड़े तिजन की तू सेवा लाग अविज्ञान हो भी तेरा नाम तिजन के पूजे से सारा श्लोक सतपुरख जन जाने हो सर्व किसका न हो कि संस सुधरे मन कर दूंगा अश्वरी सत गुरु सिख की करे पटपाल सेवी को गुरु सेवा दयाल सिख की कोई गुरमत बलहर है गुरबच्छी हा नाम उचर है सतगुर सिख सुमन खट है गुर का सिख मसाते हट है सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख पटपागी है सतगुर सिख का हल पल सुबार है नानक सतगुर सिख जी नाल सुमारे गुर के ग्रह है सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आप सो सत्य मनावे हर नाम दिन सत्य आवे मंडी के सतगुर के पास सेव के कार्य रास सेवा कट हो न कमी किसको हो साहब स्वामी अपनी कृपा आज साहब करे नाम सो सेवक गुर की मतरे बीस विश्व गुर का मन माने सो सेवक को निश्चय की गर्चा में सो सतगुर जिस रे हर नाव अंक बार गुर को बह जाओ शर्मा जी का दाता हूँ आज चाहे पार ब्रह्म रंग राता हूँ ब्रह्म में जन जन्म पार ब्रह्म एक अपने घर पर कैसे मैं जाइए उन्होंने कैसा गुरबुट पागी पाइए दर्शन उगाने मंथन तो पतिया ने पूरा गुर अख्याओ जाता मंत्र अमृत देख देखे संत गुंडियन चिंतनी पाए नानक जी साहे चलाए मिलाए गिरबाई कुछ तो अनेक सतपुरुष पूर्ण वेक काहू गौर नपम प्राणी गम गोच पुनर्वाणी मेरा आहन वै सुखदायी ताकि कुंड के न पाई अनु पंक बंधन नित करे चन कम हृदय संग्रह सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर सार ऐसा प्रजपने ए हो हर स्वागे गन को अमृत सीधे अमृत हो उस पुरुख का नहीं करे बनवास जाके मन पर के दिन पास आग चाहे हर का नाम ले सचिव ले सेवी को दे मोह माया के संग में नहीं तो मन में रखे हरा एक अंधकार दीप प्रगा से नानक परम मोह दुख तक न से तब समय ठांड बरताई अनंत के दुख न से भाई जन्म मुक्ति मिटे में से साधु के दूर मुखले से पशु कने तो हो बसे सगल ज्ञान मंत्र से न से जिसका सा तिन कृपा धारी सा सुन जपना मरारी चित पाई चुके परम गगन सुनन कह हरि सर्वन निर्दिन आप सर्गुण प्रियो ही कला का दिन सगरी में ही अपने चर प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर दिन भी जाना ही कोई सन्मान पे एक है ओत भूत रवैरु प्रांग पाए प्रगार साथ के संग रच रचना अपनी का धारी अंक बादान चल हारी स्लोक साथ में चाले दिन भजन दिशा सगरी चार हर हर नाम कमावना नाम के संसार अष्टरी संत जना मिलकर विचार एक दिन में नाम उधार अब पाप से नीत उतारो चरण कमल में उधारो करण कारण प्रसो समर्थ दृढ़ का गहो नामर बात एहो तन संत हो गो भगवंत संत न कर निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठुर पावे सो तन हर सेवा से पावे जिस सुख गंत मा के नीत सो सुख साधु संतरीत ये शोभा को करी पल चाहनी है सा शोभा पर हर की चाहनी है उनका स्वामी रोग में जाए रोग मुझे अब खराए सर्व धाम में हर नाम धाम जप नाम उधर जे प्रमाण मंत्र वो दो हर के नाए जाए जिनसे काल का आवे खाए ठाकुर भी बनना आगे को ये जाके दे बचे तो एक अंतासी करना हर नाम से मेरे सेवे संस्था पर जिनसे दूर है यार सभी प्राय आत्म प्रगास
ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਚੇ ਬਲਾਸੀ ਕੌਣਾ ਨੂੰ ਕਾਸੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਤ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿ ਜਮ ਕਾਚਾ ਜਨਮੇ ਸੁ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਪ ਜਮਨ ਮਿਟੇ ਵੇ ਸੇਵ ਆਪ ਜਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਰਦੇਵ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰ ਅਨਕਾ ਪਾਵਨ ਕਿਕਮ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਚ ਦੇਵ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਪਰਪੁਰ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਮਨ ਕੇ ਤਮਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਤੰਗ ਨਾ ਚਾਲ ਸੇ ਤੇਰੇ ਤਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸੂਤਰ ਮੀਤ ਕਟੰਬਰ ਬੰਤਾ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮ ਸਲਾਤਾ ਰਾਜ ਹੰਗਮਾ ਵਿਚਾਰ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮ ਛਟਕਾਰ ਅਸ ਹਸਤੀ ਅਸ ਸੁਬਾਰੀ ਤੂੰ ਗਗਨ ਸੂਤ ਵਿਸਾਰੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾ ਬਗਾਨਾ ਨਾਮ ਦਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਕਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੂ ਲੈ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਂ ਰਸੀ ਚੰਨ ਕਮਲ ਰੱਬ ਮੰਗਵਾਹੇ ਜਨ ਜਨ ਕੇ ਕਿਲਤ ਜਾਹੇ ਆਪ ਜਗੋ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਜਗਾਵੋ ਤੁਮ ਕਹੇ ਤੇ ਰਾਤ ਪਾਵੋ ਸਾਥ ਤੁਸਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿ ਤੁਹਾ ਨਾਮ ਤੁਮ ਗਾਓ ਗੋਲੋ ਦਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੁਮੇ ਵਿਖ ਫੈਲ ਹੇ ਚਿੰਤ ਬਸੇ ਸੁਪਨਾਲ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਹੰਗਮ ਸਮਾਲ ਸਾਧ ਸਿਆਮ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚ ਤਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਜੀ ਸੰਤ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਸੁਧਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰੀ ਕੋ ਦੇਖੋ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹ ਏਕ ਸਮੇ ਏਕ ਸਪੇਕ ਏਕ ਸਮੇ ਏਕੋ ਮਨਾਏ ਏਕ ਸਪੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ਮਨ ਪੰਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਸਲਾਹ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਅਸ ਵਿਆਪ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਤੇ ਪਾਏ ਏਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਏ ਮਨ ਤਨੰਦ ਏਕੋ ਵਿਆਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਤਾ ਸੁਣੋ ਤੋ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੁਮ ਆਇਆ ਤਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਵਰੀ ਜਾਤਕ ਜਨ ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਸਾਜ ਬੰਨੇ ਸਾਜਾ ਧੂਰ ਸਨਾਸਨਾ ਸੰਕੇ ਤੁਮ ਗਾ ਗਏ ਸਾਜ ਸਾਜ ਸੰਤ ਮੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਨ ਕਮ ਸੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਤ ਕਰੋ ਤਨ ਕੀ ਮਿਤਰੀ ਤੇ ਏਕੋ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨਾ ਸਿਖੋਏ ਹਰ ਸਾਜ ਬਿਲਾ ਸੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਿਨ ਜਿਤਾਨੇ ਤੀਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਨੇ ਸੁਗਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਸਭ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲਾ ਗਏ ਬਸ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਤੋ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ ਸੁਖੋਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੋ ਦਿਆਲ ਸੇ ਸੀਮੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਿਆ ਜਨ ਮਰਨ ਵੀ ਸੁਣ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸੰਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਸਕਾ ਸੱਤ ਲਿਆ ਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਲੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੀਏ ਕੀਆ ਜਾਨੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੇ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਅਗਿਆ ਰੱਖੇ ਜੇ ਸੰਗ ਕੋ ਬੇਲਾ ਲੱਖੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੀ ਵਿਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜਨ ਜਨ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਤਮਾ ਨਾਮ ਚੰਦ ਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੇ ਹੁਕਾਮ ਆਨ ਦਿਆਲ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੰਗਤ ਵਾਹੀ ਤਈਏ ਤੋ ਤਈਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਤਲਸੀ ਤਨ ਹੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਗਲਾਮ ਬੂਟ ਸਜਾਗ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਸਜਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਗਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਪਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾ ਬੰਤਨਾਂ ਤੇ ਸੋ ਨੇਤਰ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਸੰਤ ਹੋਏ ਭਜਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਸਾਗੇ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸ ਦੀਜੇ ਕਰਮੀਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇ ਹਿਮ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾਸਲ ਸੁਣਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖ ਸੰਗ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਬਸਲ ਸਦਾ ਕਰਤਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਕਿਰਤਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਤਵਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰ ਕਰਨ ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ

अरे ये कृष्णेन्द्र चेतन पाप पुण्य तब कैसे होता जब सारी पुलिस मुस्मा देवे कंगो दे कृष्ण कुमार से जब इसका वर्ण कहने जाते तब उसको कृष्ण व्यापते जब आप पार बह मोहन का मोह का क्रोध कारण अपने चेहरा पे की जाने का निहान दूजा जब हो गए तो प्रभु के गए धनी तब मूर्खो किसको बनी जब एक हर गमो पार तब लड़के सुरगुण को कौन था जब निर्गुण को शायद भाई तब शिव शरत को बैठाए जब आप अपनी जो करे तो कम में धारे कम का धरे अपनी जनता का निहार नानक सागर गम अपार अवनाशी सुख अपना सुने तो जन्म को कामना सुनिए कपिल सोए तो जिनकी प्रात को सो जाओ तो गुप्त तो देखा तब के अगर गुप्त हो तो सूच लेखा जब रात में जो गोचर गा दे तब अंधे को मंगल मा दे अपना आप ही कर जा नानक अपने रूप आप ही ये कर जा जो निर्मल पुरुष पर सत होता है तो निर्मल के सत होता जय निरंकार निर्वांत कौन कुमार कौन गुमान जय स्वरूप केवल जगदीश कह चांद से जय लक्ष्मति जय जीव स्वरूप संगतम आ गए कह तो जय तू कंत पिता गए अनुक्रम करने हार नानक कर दे करने सुमार जब अपनी शोभा अपनी संग बनाई तब कम लोग आए बाप सुख भाई के संतरा पेपर जीन के वीर थे कहो कुछ जब आप आप खा रहे तो सदे मेरे अफसर का विचार है कि आपने ये तो अपना अपने रहा के कौन था कर कौन का ये चेहरा दुश्मन दुश्मन है कि तुम्हारा के मन का अपने का जब आप जय अशन अशेर पेट समाया हुआ विषय व्याप्त माया आपको आप देश तो उनका नहीं पर देश है जो एक एक एक बनता तो कोई अचित सला दे चिंता जो आप आप किया रहा तो कौन कथे को सुनने हारा बहुत उनके इससे विचार उनका आपको आपसे पहचा यह आप रचियो प्रपंच आकार देव गुण में की नो विस्तार पाप उनके कई कहावत को नरक को सुरगुण शावत आल जाल माया जन जाल होमे में परम पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार के ध्यान अपन खेल आप कर देखे खेल सुन कुछ तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसे का सा संतता पे दोह पाका आपे तनी उनकी शोभा मुंह बनी अभय को तो करे नंग चोरी अपे रस्ते गुमे जो जिस पावे किस आपने नाये लावे जिस पावे किस खेल खिलावे वे शमार था अगन तो चले जिम लावे तो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकरा अपे वचन हार नानक को पत्री हार दूजा कह दृष्टार स्त्री आप कथे सुने हार अपनी एकादी सारे जाते सारे का शिष्य पाए अपने पाने लायक माए तुम तो तीन सोहे अपन पूछा जल करो या को प्रभु जी हो आप बुझाए ताकि नाम सोई बन पाए तो सुंदर सी तट का देता हूँ नाम दूसरे सेठ का देता हूँ जी जंतर सब ताते हाथ दयाल अनाथ सुना जिस रास्ते से कोई न मारे सुनिया जिस मनो बिसारे अब गाँव को जाए सबसे रेखन मिल राय जी की झुक जाते हैं बात अंतर भाव जो साथ गुण भाव में अंतर पान नानक दास निहाल पूर्ण पूर्ण रह दिया सब ऊपर होत कर पाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जमी हो गया तक पहले जीवन में पार जो जो ऋषियों से पीछे क्या जिस पावे से मिलाए पवित्र हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मन कर्म हान उनके जान जाने लागा हर एक नाये किसकी आंखें बिती जाए सेवक को सेवा बनाई हुक्म पंडित पाई इसे ऊपर नहीं लिखा जाके मन में सन अंकार बंधन रोल पैनर बहर अंदर पूजे गुरु के पैर लोग सुखे पर लोग से हिले नानक हर तरफ आपे मिले साध संग मिल करो आनंद गुण राघो पर परमानंद राम लंपित करो विचार लभ देवता करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ संत अनकाय स्वाओ आठ पैर को देखो मेरा मिटे ज्ञान दिन से मेरा सिर उपदेश हृदय बिताओ मनी छेदन को फल पावो हंस।

सुख सागर दर्तन वारन शब्द सर गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम त्यांतर गावे इंद्राद भगत प्रहलाद को आत्म रस जन जानियो काब काल सुजा सुगावो गुरु नानक राज जोग जन मानिया। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियार गुरु नानक जन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियार और की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना कहा बुद्ध प्रभ तुष हमारी वर्ण सक महिमा जो तिहारी हम न सकत कर से हो तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी देता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास

तो कहोटा लगुर से भैया अहन सुसहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु का जानमा मरण दुख जाए।

0: तैनू मोहने किसे ने कन लाउणा, ओ साडे किसे पैण पाई ने। हां भी साडे किसे पैण पाई ने।
1: दुखी बड़े जो गुरु दे घर दा, दुखी बड़े जो गुरु दे घर दा, कौन ओदा मन ठार दऊ, जीरी मर दे अचारे आप चार दा, दस ओनू कौन मार दऊ। हां भी दस।

0: बोले फिरिंद शिमेश जी ठंडाली शिका के, बोले फिरिंद शिमेश जी ठंडाली शिका के, दस लख वैरी पालिया है केराया के,
1: वो दस लख वैरी पालिया है केराया के,
0: दस लख वैरी पा

0: जद मोरलिया पाड़ा भोए लेटिया पीछे मच गई हाल पुकार
1: जद मोरलिया पाड़ा भोए लेटिया पीछे मच गई हाल पुकार जद मोरलिया

0: संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी
1: सतगुर रहे
0: दिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे फलो।

तो देखो कि दरिया का रुख बदल दिता गया है साइंसदाना की साइंस विपिश में नाल दो दरियावान का वह इको थावे कर दिता गया रुख बदलिया जा सकता दरियावान का पर समय नाल जेड़े लोग वक्त बिगाड़ते हैं उन्होंने दरिया कुछ नहीं बिगाड़ सकते देर ही तो पाल सकते दुनिया अंदर संसार अंदर हर असफलता जड़ी है वो आलस के कारण पैदा हो रही जन्म दे दुनिया अंदर कोई दुखांत ऐसा नहीं जेड़े वक्त नाल जागन से उस टालिया ना जा सकता हो दरियावान के वहन कुछ नहीं बिगाड़ सकते रुख बदले जा सकते उन्हां विच आए हुए गलतले ते हर कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंतजाम हो सकता है मनुखता नूं बचाया जा सकता है पर इको शर्त के समय तो पहला वक्त के नाल ही ये विचार साडे सामने होवे जदों हर आ जाए जदों कोई दरिया का बलवान वेण किसी कंधी नूं किसी मजबूत पग नूं भी सहाल है हर का रूप धारण करना है मनुख इना अवेसला होवे उन्हें बचाओ नहीं तो बेड़ी भी तैयार न की हो कोई तरह भी ना हो किस्मत हो गई हर आ जाए की करेगा तेरे को कोई बचन का समान ही वक्त ना तैयार नहीं किया गया गुरु ने बलवान किया जिंदगी एक होर ख्याल देना मैं फिर भी देखा जिन्होंने वक्त से इंतजाम नहीं किया कई बार दरियावान के बलवान हड़ ऐसे आते हैं वो चंगे चंगे पत्थरों जोड़ के बनाए हुए किनारे भी ढा देते बन भी टुट जाए जे भला पत्थरों का बन टुट जाए ख्याल से कोई भोला मनुख चिपड़ जोड़ के और बन बनाना शुरू कर दे फिर गुरु तक बन लगा पत्थर का बन टुट जाए कोई भोला मनुख चिपड़ भी जिन्हें मत बनाई दी है चिपड़ की मिट्टी इकट्ठी करके उनके नाल उस दरिया के वह रोकना चाहे ते गुरु आखते ने मैं की आखांगा और भोलिया तेरे चिकड़ लाने का की फायदा होगा जब पत्थर के बंद भी टुट गए गुरु ने बाणी कट रखी।